आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि।

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

कानवे दशमलव 2 MHz पर ये तोहा सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तोहा सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ई बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंदी।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सिएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। कर्मचारी मामलों में फील्ड अफसर नहीं ले सकेंगे फैसला। हिमाचल में 25 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, कंपनियों से टेंडर मांगे। गाँव गाँव पहुँची HRTC की इलेक्ट्रिक बसें। 49 इको टूरिज्म साइट्स को 15 दे। कांगड़ा को चिड़ियाघर की सौगात जल्द। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र कल से। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेशवासियों से राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसका लाभ आज की युवा पीढ़ी व्यापक रूप से उठा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की शपथ दिलाई। हिमाचल प्रदेश में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की योजनाएं युवाओं और किसानों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोल रही हैं। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा विकास खंड के समलोटी निवासी प्रणव धर ने भी सरकारी सहायता का लाभ उठाकर मशरूम उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रणव धर ने उद्यान विभाग के सहयोग से मशरूम ग्रोइंग यूनिट स्थापित की है। ये परियोजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत स्वीकृत हुई है। परियोजना की कुल लागत 60 से 70 लाख रुपए है, जबकि विभाग की ओर से 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। जिला कांगड़ा की तहसील नगरोटा बगवा के समलोटी गांव के प्रणव धर ने इस परियोजना के माध्यम से पारंपरिक खेती के साथ एक आधुनिक और लाभकारी कृषि व्यवसाय को अपनाया है। मशरूम उत्पादन कम भूमि में बेहतर आय की संभावना वाला व्यवसाय माना जाता है और हिमाचल की जलवायु भी इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। प्रणव का कहना है कि मशरूम उत्पादन का विचार उन्हें अपने परिचितों से मिला, जिन्होंने हरियाणा में बड़े स्तर पर मशरूम फार्म संचालित किए हैं। इसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में संभावनाओं को समझा और उद्यान विभाग की योजनाओं की जानकारी लेकर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। सरकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने परियोजना को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे प्रयास न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में अब संबंधित प्रशासनिक विभाग ही फैसला लेगा। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक प्रदेश हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को एक मामले में हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्ट 2024 को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को अपील खारिज कर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि हाई कोर्ट के ताज मोहम्मद मामले में दिए गए फैसले के आधार पर विभिन्न विभागों में लंबित मामलों की जांच और निर्णय संबंधित प्रशासनिक विभाग के स्तर पर ही किया जाएगा। राज्य सरकार करीब 25 साल के बाद राज्य में सरकारी लॉटरी की बिक्री फिर शुरू करने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग के निदेशालय कोषागार, लेखा व लॉटरीज ने पेपर और ऑनलाइन लॉटरी की बिक्री के लिए सोल एंड सेलिंग एजेंट नियुक्त करने को टेंडर जारी किया है। इच्छुक कंपनियां 14 सितंबर 2026 शाम 4 बजे तक ऑनलाइन बोली जमा कर सकेंगी। टेंडर के मुताबिक लॉटरी के तहत एक दिन में अधिकतम 12 ड्रॉ किए जा सकेंगे। इसके अलावा साल में 3 बम्पर ड्रॉ भी होंगे। राष्ट्रीय अवकाश के दिन कोई ड्रॉ नहीं होगा। लॉटरी की बिक्री हिमाचल प्रदेश लॉटरी नियम 2026 और केंद्र व राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुसार ही की जाएगी। लाइसेंस फीस लॉटरी की बिक्री का ठेका पाने वाली एजेंसी को सरकार को हर साल 10 करोड़ लाइसेंस फीस देनी होगी। इस फीस में हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ग्रामीण रूटों पर नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सीटों से लैस इन बसों में सफर को लेकर ग्रामीण यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। HRTC ने फिलहाल इन इलेक्ट्रिक बसों को पुराने संचालित रूटों पर ही उतारा है। किसी नए रूट पर इन बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है।
नई इलेक्ट्रिक बसों में बेहतर सीटों के साथ आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होने से यात्रियों को लंबी दूरी के ग्रामीण सफर में राहत मिल रही है। प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म साइट्स आवंटन की प्रक्रिया 2 दिनों में पूरी हो जाएगी। 49 साइट्स के लिए करीब 15 बिडर्स ने दिलचस्पी दिखाई है, लिहाजा अब वन विभाग वित्तीय और तकनीकी बिड खोलेगा। इसके पूरे होते ही टेंडर प्रक्रिया भी वन विभाग पूरी कर लेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। इसके तहत विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीण पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए इको साइट्स को चिन्हित किया है, जिनका चरणबद्ध तरीके से विभाग की ओर से आवंटन किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रदेश में सरकार की ओर से 17 इको टूरिज्म साइट्स का आवंटन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश को विश्व पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने वाले सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दुर्गेश अरण्य इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क ने अब धरातल पर तेज रफ्तार पकड़ ली है। कांगड़ा जिला के बनखंडी में आकार ले रहे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर के पहले चरण का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। विभागीय लक्ष्यों के अनुसार दिसंबर 2026 तक इसके पहले चरण को समेटने की पूरी तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो वर्ष 2027 की शुरुआत में इस भव्य पार्क के द्वार पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। यह मेगा प्रोजेक्ट कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश सत्र में गूंजेंगे कि 14वीं जनता से जुड़े विधानसभा के इस सत्र में 1036 सवाल, कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को विधानसभा सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही को सार्थक और उत्पादक बनाए रखना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के भीतर जो कुछ कहा जाता है उसे सत्य माना जाता है और इस मर्यादा को बनाए रखना जरूरी है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा की कार्य उत्पादकता देश में बेहतर रही है और अलग अलग सत्रों में यह 90 से 132% तक दर्ज की गई है।

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया आकर गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया

0: वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
1: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
1: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

दोस्तों, अक्सर जिंदगी में कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए हमें बहुत तकलीफ तो होती है, मगर उन फैसलों से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है। क्योंकि हर सही फैसला आसान नहीं होता और हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। कभी कभी आज का दर्द ही कल की सबसे बड़ी खुशी की वजह बनता है। बस खुद पर भरोसा रखिए और सही दिशा में आगे की ओर बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, 91.2 ओमेगा हर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो वंचन धर्मशाला, और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है आप सभी का बेहद खूबसूरत सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला लेकर। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान भी बहुत ही अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। तो इसी खूबसूरत सी शुरुआत के साथ दोस्तों, जैसे कि आप सभी की सुबह की शुरुआत हुई है बहुत ही प्यारी सी मीठी सी, उसी तरह से कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। 9:04 हो चुके हैं और ये बातचीत का सिलसिला, मनोरंजन का सिलसिला जारी हो चुका है। वैसे तो आप सभी रेडियो गुंजन धर्मशाला से इंजॉय करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ खास बातों के साथ कुछ खास पल ही रहते हैं आप सभी के साथ। तो इन खास पलों को यादगार बनाइए, संजो कर रखिए। तो आइए दोस्तों, इस बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं कार्यक्रम में एक प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर। और इसी प्यारे से गीत के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में मनोरंजन की।

जी दोस्तों, तो आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त भी आ चुकी है, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट के साथ जुड़ चुके हैं इस समय आप सभी। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और इस बहुत ही खूबसूरत से गीत को आप सभी ने एंजॉय किया। अब के बरस मूवी से लिया था दोस्तों, सुखविंदर सिंह, ऋचा शर्मा, सुनिधि चौहान के आवाजों के साथ। फिलहाल कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के आवाज के साथ। तो आइए इसी के साथ अपनी कार्यक्रम के इस सफर को आगे की ओर बढ़ाते हैं।

जी दोस्तों, आज 21 अगस्त 2026 का दिन। देखिए समय किस तरह से भागता जा रहा है और हमें भी भगाकर लेकर जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, समय के साथ चलना ही जिंदगी है, इसी को जिंदगी कहते हैं। खैर, इसी के साथ आप सभी को भी लेकर चलते हैं मौसम की ओर। तो इस समय दोस्तों, धर्मशाला का तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप सभी महसूस कर सकते हैं। और प्रदेश में लगातार सक्रिय मानसून से अब 23 अगस्त से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले दो दिन प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा और कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 23 से 26 अगस्त तक बारिश का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन इसकी तीव्रता कम रहने की संभावना है। इस अवधि के लिए मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। इससे बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य को गति मिलने की उम्मीद है। जी दोस्तों, बारिश के चलते जो है काम भी अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी राहत जो है वो बताई गई है। और बिल्कुल फिलहाल के लिए मौसम आंखों देखा हाल जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम है जिस तरह से आज के समय में लोग हैं ना, रंग बदलते टाइम नहीं लगाते, तो मौसम तो फिर मौसम है, वो तो एकदम से करवट बदल ही देगा। जी दोस्तों, लेकिन सावधानी और सतर्कता हमारे साथ हर पल रहनी चाहिए। तो इसी के साथ आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, जाल मूवी से।

0: सो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और 9:20 हो चुके हैं, तो मनोरंजन और बातचीत के साथ साथ जरूरी है दोस्तों कुछ खास जानकारियां। जी दोस्तों, समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं समाचारों की ओर।
1: सदन में गूंजेंगे 1000 से ज्यादा सवाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मॉनसून सत्र को लेकर सत्तापक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने विधायक दल की बैठक आयोजित कर बनाई रणनीति। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पौरी मेला आज से होगा शुरू। और चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां की तेज, यात्रा 4 सितंबर से होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ 3री उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्यों की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों के से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होगी। 3 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज सदन में पूर्व विधायक स्वर्गीय विजेंद्र सिंह और रामचंद्र भाटिया के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए जाएंगे। सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न हैं। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और इस बार सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। मॉनसून सत्र के दौरान शिमला में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 750 पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विधानसभा परिसर और इसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से 3 मुख्य सेक्टरों और विभिन्न उप सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टरों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ बहुस्तरीय जांच और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कल देर शाम भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की शिमला में महत्वपूर्ण बैठकें हुई। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर सरकार का रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि विपक्ष सत्र के लिए तैयारी के साथ आए, जनहित के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार 10 दिन का सत्र रखा है। इससे पहले मॉनसून सत्र इतना लंबा नहीं होता था। विपक्ष को हंगामा या वर्कआउट करने के बजाय सदन में बात रखनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति बनाई है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक की बैठक में कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के दो ही छंद गाने के निर्णय को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है।
3: इस बैठक में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो वंदे मातरम गीत के दो पैरा गाने का ही निर्णय हुआ है, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल प्रभावी रूप से अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करेगा। सदन के अंदर जो भी हमने चर्चाएं दी हैं अनेक नियमों के तहत, उसके लेकर हम पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे लॉजिक से साथ अपनी बात सदन के अंदर रखेंगे और सरकार को हर फ्रंट पर घेरने की कोशिश करेंगे।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की जनता से राष्ट्रीय जनगणना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने लोकभवन शिमला में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत अपनी स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने कहा कि 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना की जाएगी और बर्फ वाले क्षेत्रों के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 17 से 31 अगस्त तक डिजिटल स्वगणना की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्यपाल ने लोगों से इस आधिकारिक स्वगणना सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने और अपने व अपने परिवार से संबंधित पूरी और सही जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए 13 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को हिमाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एम्स स्तर की रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की है, जिसे हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में आधुनिक सर्जरी के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित की गई हैं। सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 6 माह में MRI, CT स्कैन और एक्सरे की प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना है। इसके अलावा अगले 4 माह में सभी मेडिकल कॉलेजों में ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जाएगी, जिससे एक ही रक्त के नमूने से कई प्रकार की जाँच संभव हो सकेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज एक्स हैंडल @AIRNews_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय पौरी मेला आज से त्रिलोकीनाथ में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय यह मेला 23 अगस्त तक पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
4: लाहौल स्पीति के धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी लोक परंपराओं का प्रतीक राज्य स्तरीय पौरी मेला 2026 आज से त्रिलोकनाथ में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय ये मेला 23 अगस्त तक पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले में सप्तधारा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्याएं मुख्य आकर्षण रहेंगी। त्रिलोकनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। अंतिम दिन मणिमहेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था त्रिलोकनाथ में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से रवाना होगा। इस धार्मिक दृश्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से सुरेंद्र कुमार।
1: चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलने वाली यह यात्रा इस वर्ष 4 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। रोजाना अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं के पंजीकरण का निर्णय लिया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
5: चंबा के पवित्र मणिमहेश धाम में आस्था के इस बड़े पर्व के लिए प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि चंबा भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग के खराब हिस्सों को दुरुस्त करने का काम जारी है, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी ना हो। वहीं पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए मणिमहेश पैदल ट्रैक को भी यात्रा शुरू होने से पहले दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का प्रयास है कि यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपात स्थिति से निपटने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम रहें। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: वाहिनी स्कॉलरशिप के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिमला में कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हर वर्ष 80 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है और इसमें 10 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अब तक इस योजना से 348 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस योजना के प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा जिला के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन से 135 सड़कें अवरुद्ध है, जबकि 79 पेयजल योजना और 22 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पंजाब केसरी की सुर्खी है, विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से हंगामापूर्ण रहने के आसार। दिव्य हिमाचल के शब्द है, 3 सितंबर तक कुल 10 बैठकें, पहले दिन ही टकराव के आसार। हिमाचल दस्तक लिखता है, CM का आह्वान, एकजुट होकर विपक्ष के सवालों का तथ्यों के साथ जवाब दे विधायक। दैनिक जागरण की खबर, हिमाचल में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का किया आग्रह। प्रदेश विधानसभा का मौसम सत्र आज से शिमला में, सदन में गूंजेंगे 1000 से ज्यादा सवाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मौसम सत्र को लेकर सत्तापक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा ने विधायक दल की बैठक आयोजित कर बनाई रणनीति। लाहौल स्पीति का राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पौरी मेला आज से होगा शुरू। और चंबा की मणिमहेश यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां की तेज, यात्रा 4 सितंबर से होगी शुरू। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो इंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अक्सर हम जानबूझकर या अनजाने में कई बार दूसरों के साथ गलत कर जाते हैं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं, क्योंकि वास्तविक चरित्र वही है जो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करे। और जो इंसान दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, वो अनजाने में ही सही अपने ही संस्कारों और मर्यादा की नींव को कमजोर कर रहा होता है। दोस्तों, अहंकार और क्रोध में निकला हुआ एक कड़वा शब्द जीवन भर की कमाई हुई इज्जत को पल भर में धूल में मिला सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि दूसरों को आदर देना ही अपने व्यक्तित्व की सबसे बड़ी महानता और सच्ची मानवता है। जी दोस्तों, यही जिंदगी में सब कुछ है, और तो कुछ भी लेकर हमने जाना नहीं है, सब यहीं के यहीं रह जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में इन कुछ खास बातों के साथ हम और भी खास बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ता भारत किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है, और लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है जो नहीं जानते हैं, तो उसी पे आज की एक खास बातचीत जो है दोस्तों रहने वाली है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कुमार सानू की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। जी दोस्तों, आप कहीं भी ट्यून कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, जरूरी नहीं है जो लोग रेडियो के माध्यम से रेंज के इशू की वजह से नहीं सुन पा रहे हैं तो वो ज़रूर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और जुड़ सकते हैं इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर दिन की कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियाँ रहती हैं आप सभी के लिए, आप सभी के साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, सुबह सुबह जब धौलाधार की चोटियों पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, जब पहाड़ों के बीच बहती नदियां अपनी मधुर धुन सुनती हैं, सुनाती हैं आप सभी के कानों तक पहुंचाती हैं, जब देवदार के जंगलों से गुजरती हवा हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है, तब एक बात साफ दिखाई देती है, प्रकृति के पास ऊर्जा का असीम भंडार है। सूरज की रोशनी, हवा की गति, नदियों का प्रवाह और जैविक संसाधनों की शक्ति, अगर इनका सही संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग किया जाए तो यही ऊर्जा हमारे भविष्य को रोशन कर सकती है। जी दोस्तों, तो आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही बेहद खास ये बातचीत करने वाले हैं। आप सभी समझ ही चुके होंगे दोस्तों, जहां प्रकृति की बात आ जाती है तो हर बात को जो है हमें नज़रअंदाज नहीं करना होता है। छोटी से छोटी बात जो है वो ध्यान देने लायक होती है, क्योंकि जहां ये मानसून का कहर कई बार होता ना कि एक तरह से हमें लगता है ना ये एक बिगड़ सा गया है, पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा सा गया है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कभी गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो शायद हमारी गलतियाँ या हमारी नज़रअंदाज की है, तो ज़रूर इस छोटी सी एक झलक में हम अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आइए, इसी के साथ बढ़ते हैं फिलहाल कार्यक्रम में आगे, क्योंकि अभी तो बातचीत का सिलसिला है और ढेर सारी बातें आप सभी के साथ करने को हैं। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया, मोटिवेशनल सा, कि हौसला कभी भी नहीं झुकना चाहिए। जिंदगी में जब भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ये हौसले ही हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, मजबूती बनाए रखते हैं, हर राह को आसान बना देते हैं। लेकिन एक बार अगर ये हौसला टूटता हुआ नजर आया तो सब बिखरता हुआ नजर आने लगता है। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर।

दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए मिलने वाली वाहिनी छात्रवृत्ति का अब प्रदेश भर में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों तक छात्रवृत्ति योजना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी योग्य विद्यार्थी लाभ से वंचित न रहे। वाहिनी स्कॉलरशिप ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री से भेंट कर योजना की जानकारी दी। ट्रस्ट वर्तमान में हर वर्ष 80 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। और दोस्तों, इस संख्या में प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब तक योजना से 348 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। छात्रवृत्ति से विद्यार्थी MBBS, कानून, इंजीनियरिंग, प्रबंधन सहित विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। जी दोस्तों, जब तक जानकारी नहीं होती है, जानकारी का अभाव रहता है, तो हम किसी भी सुविधा का लाभ जो है वो नहीं उठा पाते, खास करके ज़रूरतमंद परिवार जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है, जो लोग जानते हैं तो वो उन परिवारों तक जानकारियां पहुंचाए। ज़रूरी नहीं है जो अभी हमने बात की वही जानकारी, जो भी बेनिफिट अगर उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं तो ज़रूर कभी पीछे मत हटिए। तो दोस्तों, ये अच्छाई और कहते हैं ना कि पुण्य का काम, जहाँ हम यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं तो यही हमारे आसपास ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो लोगों की हेल्प करना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो कभी भी उससे पीछे मत हटिए, जेलेसी के अभाव में या किसी भी और अभाव में। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो सो इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों के साथ जमीर मूवी का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया जी दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और अपने आसपास जिंदगी में आसपास की बातों पे अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हमें झकझोर कर रख देती हैं, शॉक कर देती हैं कि ऐसा भी हो सकता है जी दोस्तों। धर्मशाला की ही हम बात करें तो एक 9th क्लास का बच्चा जो सिर्फ फोन के लिए एक खौफनाक कदम उठाता है, तो सोचिए दोस्तों आज समय हमें कहां से कहां लेकर जा रहा है। छोटा बच्चा होता है तब तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जब मन किया उनके हाथों में फोन थमा दिए, जब मन किया तब ले लिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो एक उनकी जिद बन जाती है और उसी जिद को पूरा कर पाना कई बार पेरेंट्स के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। तो समय रहते चीजों को समझना और बच्चों में जो एक धैर्य की हैबिट है वो बनाना बेहद जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आए, न जाने किस तरह से बच्चे किस दिशा में भटकते हुए नजर आए, कोई नहीं जानता। समय जो है दोस्तों हाथों से निकलता जा रहा है और हम इन सुविधाओं के चलते, अपनी इन चॉइस के चलते कई बार कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। पेरेंट्स अपने काम में व्यस्त रहते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि बच्चों को फोन दे दिया जाए तो शायद थोड़ी देर के लिए आराम से हम अपना काम कर लें, लेकिन यही आराम कई बार भारी नुकसान कर जाता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में घरों में सिर्फ एक बच्चे का ट्रेंड जो है वो आप सभी देख ही रहे हैं। पहले समय होता था जब एक ही घर में 3-3, 4-4 या 6-6, 7-7 बच्चे भी होते थे, लेकिन अब एक बच्चा यानी कि उसे हम हर फैसिलिटी दें, अच्छी बात है कि हम जो है उन्हें हर एक सुविधा प्रोवाइड कर सके, लेकिन सुविधाओं को प्रोवाइड करने के चक्कर में कई बार हम उन्हीं के जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, जाने अनजाने में ही सही लेकिन करते तो जरूर हैं। छोटी छोटी सी गलतियां हमें बहुत बड़े नुकसान की ओर लेकर जा सकती हैं। तो उन पेरेंट्स ने भी अपील की है सभी पेरेंट्स से कि जो हमारे साथ हुआ या हमने जो सिचुएशन फेस की, तो भगवान ना करे किसी और घर में ऐसी सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़े, तो पहले से ही सतर्क रहें, सावधान रहें, बच्चों को मोबाइल फोन दें बट नजर भी रखना जरूरी है और उन्हें एक पेशेंस हैबिट जो है वो जरूर मेंटेन करें। हर एक चीज को उनके बोलने से पहले उनके हाथों में थमा देना वो भी एक गलत बात होती है जी दोस्तों। तो इन्हीं छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखेंगे तो शायद मुश्किलें कम हो जाएंगी और हम जिंदगी को और बेहतर जो है वो बना पाएंगे। तो फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बात कर रहे हैं दोस्तों, अक्षय ऊर्जा की। आखिर क्यों जरूरी है ये अक्षय ऊर्जा? दोस्तों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके प्राकृतिक संसाधन असीम नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का भंडार सीमित है। कई वर्षों से दुनिया तेजी से इन संसाधनों का उपयोग कर रही है। हमारे घरों की बिजली, कारखानों की मशीनें, वाहनों का ईंधन, खेती बाड़ी और आधुनिक जीवन की लगभग हर गतिविधि ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमेशा उपलब्ध रहेंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, यही कारण है कि आज पूरी दुनिया वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर जो है वो तेजी से बढ़ रही है। और अक्षय ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से बार बार उपलब्ध होती रहे और जिसका स्रोत जल्दी समाप्त ना हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा जैसी संभावनाएं। भारत जैसे विशाल देश के लिए अक्षय ऊर्जा केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं है, ये है ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, रोजगार के नए अवसर और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। तो दोस्तों, है ना ये कितनी खास बात। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम यही बोलते हैं कि आज जो हमारे पास है हम उसे यूज़ कर लेते हैं, जो भी चीज़ है, जो भी फैसिलिटीज़ है, हम अपना इंजॉय जो है वो पूरा करते हैं, बाकी आने वाले समय में किसने देखा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता। तो इसके लिए कहा भी जाता है कि जो आज के पल है उसने खूबसूरती के साथ जिया जाए, लेकिन थोड़ा सा हमें कई बार आगे की ओर भी सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी, उनका जीवन अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी सी बातें, ये छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां जो जरूरी हैं हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए, तो उसके लिए पीछे बिल्कुल ना हटे। तो आइए इन्हीं कुछ खास बातों के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। और भी ढेर सारी बातें, और भी जानकारी इससे संबंधित हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

तो सो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने इंजॉय किया, कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाजों के साथ, और बेहद खास बातचीत जो है आज के कार्यक्रम में हम कर रहे हैं जी दोस्तों, प्रकृति से जुड़ी कुछ खास बातें, और जहां हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारी जिंदगी और प्रकृति से ही जुड़ी हुई ही है। तो जिंदगी अगर प्यारी और खूबसूरत बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी आदतें जो हैं, हमें थोड़ा सा चेंज लाने की उसमें ज़रूरत रहती है। दोस्तों सूरज तो हर रोज़ निकलता है, सूरज हर रोज़ निकलता है, हवा हर रोज़ चलती है, नदियाँ लगातार बहती हैं, बस ज़रूरत है प्रकृति की इस शक्ति को समझने और सही दिशा देने की। दोस्तों अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश की बात करें तो प्रकृति ने इस प्रदेश को ऊर्जा की अपार संभावनाएं दी हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, तेज गति से बहती नदियां, खुला आकाश, साफ वातावरण और कई क्षेत्रों में भरपूर धूप। हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है जी दोस्तों। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदी प्रणाली से जुड़ी जल विद्युत संभावनाओं ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी होगी कि ऊर्जा उत्पादन जरूरी है, लेकिन पारिस्थितिकी संतुलन भी उतना ही जरूरी है। पहाड़ों की अपनी संवेदनशीलता है, इसलिए भविष्य की ऊर्जा नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण भी। तो आइए दोस्तों इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ, खूबसूरत से शब्दों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके एक प्यारे से, खूबसूरत से, मीठे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा, खूबसूरत सा गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति की हम बात कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। तो जहाँ हमारे इस कहते हैं ना संस्कृति को संजोए रखने की बात करें या प्रकृति से जुड़ी कुछ खास बातों की भी बात करें, अवेयरनेस से जुड़ी, तो ये चित्रकारी जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ ज्ञान जो है वो हमें देती है। चित्रकारी के माध्यम से हम अपनी जो है संस्कृति की झलक भी दिखाते हैं, जो आगे तक लेकर जाने का हम सोचते हैं ना दोस्तों। तो इस तरीके से भी हम देश विदेश तक अपनी संस्कृति की झलक दिखाते हैं। फिलहाल आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को जानकारियों की ओर। दोस्तों, बरसात के मौसम में खास करके हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है खाने की चीज़ों में। खान पान जो है हमारा सही हो, और एक तरह से कहते हैं ना दोस्तों कि बहुत सारी बीमारियां बरसात के मौसम में दस्तक देती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पनीर के नाम पर बिकने वाले ऐसे उत्पादों पर रोक लगा दी गई है जिसमें दूध की जगह पूरी तरह से या इसमें कुछ हद तक वेजिटेबल ऑयल या वेजिटेबल फैट या दूध से अलग सामग्री से पनीर बनाया जाता है। जी दोस्तों, खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे उत्पादों को असली पनीर के नाम पर बनाने पर और बेचने पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी है, जिनमें दूध की जगह जो है पूरी तरह या आंशिक रूप से अलग सामग्री का यूज़ किया जा रहा है। ये आदेश फिलहाल एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। हालांकि सरकार जरूरत के अनुसार इसे पहले भी वापस या फिर संशोधित कर सकती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पनीर और पनीर जैसे उत्पादों की जांच एवं नमूने लिए गए थे और जांच के दौरान कई नमूने निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। जी दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम पैसों के लालच में गलत चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, मिलावटी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना हम शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ईमानदारी कहते हैं ना दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे अंदर से ही झलकनी चाहिए। जब हम ईमानदारी की राह पर चलते हैं तो हर एक मुश्किल घुटने टेक देती है, लेकिन अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान हमें ज़रूर करना पड़ता है। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनके घरों में गाय है, भैंस है, तो वो तो खैर बाहर की चीज़ें खास करके दूध से बने उत्पादों को कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन हर कोई अब उस तरफ तो जा नहीं रहे, चाहते नहीं हैं पशुओं को उनकी जिम्मेदारी उठाना, उनकी देखभाल करना। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शहरों में रहते हैं, खास करके जो बाहर रहते हैं रूम्स लेकर, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय रहता है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा सतर्क रहें और दूध से बने उत्पादों को थोड़ा जांच परख कर ही खाने की कोशिश करें। जी दोस्तों, अगर अपने स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक हैं तो ये छोटी छोटी सी बातें आप ज़रूर ध्यान देंगे। फिलहाल आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इन्जॉय करते हैं कार्यक्रम का और प्यारा सा, खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला को आगे की ओर लेकर चलते हैं। आप सभी जानते हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सभी इस बहुत ही खूबसूरत सी बातचीत और कुछ खास गीत संगीत एंजॉय करते हैं। तो आइए जानकारियों के साथ और बातचीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन सभी लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। हर तारीफ करने वाला अपना नहीं होता और हर कमी बताने वाला दुश्मन नहीं होता। सच्चे लोग वही हैं जो आपकी गलतियों पर भी चुप ना रहें, क्योंकि उन्हें आपकी खुशामद नहीं, आपकी तरक्की की चिंता होती है। तो दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो आपकी तरक्की को होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो आपको आगे बढ़ता देखकर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे या दबाने की कोशिश करेंगे, या आपकी इमेज को ही दबाने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर रखिए और जिंदगी में निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों के इस राह पे आगे की ओर बढ़ते जाइए। तो फिलहाल हम भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों श्रेया घोषाल सोनू निगम की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत सिंग्स आफ्टर ग्रेट मूवी से लिया था। दोस्तों आइए इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और भारत की चुनौती। आइए अब उस पर नजर डालते हैं। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। शहर बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, घरों में बिजली की जरूरत बढ़ रही है, और इसका सीधा सा अर्थ है ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विभिन्न अनुमानों के अनुसार आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा मांग में तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे में केवल पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर रहना लंबे समय के लिए उचित विकल्प नहीं हो सकता। कोयले से बिजली उत्पादन हमारी ऊर्जा व्यवस्था का लंबे समय से महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण, खनन से पर्यावरणीय प्रभाव, परिवहन और लागत, सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव। इसका मतलब ये नहीं कि पारंपरिक ऊर्जा एक दिन में समाप्त हो जाएगी, बल्कि असली जरूरत है ऊर्जा परिवर्तन की, यानी धीरे धीरे ऐसी ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जाए। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जरा सोचिए, अगर हमारे घर की छत पर लगा सोलर पैनल दिन भर सूरज की रोशनी से बिजली बनाए, अगर गांव में सामुदायिक स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं हों, अगर खेतों में सोलर पंप का इस्तेमाल बढ़े, अगर बिजली को बैटरी में सुरक्षित रखा जा सके, तो क्या हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं होगा? दोस्तों ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। भारत और ऊर्जा की एक नई सुबह, उस सुबह की ओर हम जरूर जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम जाएंगे एक प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत। आइए इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके, और कार्यक्रम में हम बहुत ही खास बातचीत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों तो आइए

0: बात कर रहे हैं ऊर्जा के, भारत और सौर ऊर्जा की एक नई सुबह की अगर हम बात कर रहे हैं। अगर भारत के पास सबसे बड़ी प्राकृतिक ऊर्जा शक्तियों में से एक है तो वो है सूरज। जी दोस्तों, भारत के अधिकांश हिस्सों में साल के बड़े हिस्से में पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा भारत की ऊर्जा यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। आज सौर ऊर्जा का उपयोग केवल बड़े बिजली संयंत्रों तक सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर, स्कूलों और सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर, कृषि क्षेत्र में सोलर पंप, दूरदराज क्षेत्रों में छोटे और सौर संयंत्र। और ये बदलाव विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी दोस्तों, हिमाचल के कई ऐसे गांव और बस्तियां हैं जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा पहुंचाना या बिजली व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा समाधान काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, धर्मशाला के आसपास किसी पहाड़ी गांव में एक छोटा सामुदायिक सोलर सिस्टम लगाया जाए। दिन में सूरज की रोशनी से बिजली तैयार हो, बिजली बैटरी में संग्रहित हो, शाम के समय घरों, स्कूल या सामुदायिक भवनों की जरूरत पूरी हो, तो ये केवल बिजली उत्पादन नहीं होगा, ये होगा स्थानीय स्तर पर ऊर्जा सशक्तिकरण। तो आइए दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।
1: मैंने कहा ऐ संग दिल, ऐ तंग दिल,

दोस्तों, किशोर कुमार की आवाज़ में आप सभी ने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा गीत। उम्मीद है कि आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला 91.2 MHz पर। इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। चलिए आज शुक्रिया करते हैं इस जिंदगी का जिसने हमें हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। कुछ रिश्ते दिए, कुछ खूबसूरत सफर दिए, कुछ यादें दी और कुछ ऐसे सबक जिन्होंने हमें भीतर से मजबूत बनाया। जो मिला उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि शायद उसमें भी कोई वजह छुपी थी। आज शिकायतें थोड़ी कम करते हैं और जो हमारे पास है उसे महसूस करते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत होती है। जी दोस्तों, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर भी आप सभी का बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। और अब इन्हीं बातों के साथ हम उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जहाँ समय है आप सभी से दूर जाने का। क्या करें दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होती है और आज बहुत ही खास बातचीत भी हमने की ऊर्जा की, तो उसमें हम जितना बात करें उतनी ही कम है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी कोशिश और छोटी सी आदतें, छोटी सी जिम्मेदारियां हमारी जिस पे हम गौर फरमा सकते हैं। और आज के समय में सौर ऊर्जा को सच में बेहद खास माना जाता है और उसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो आप भी इस बारे में जाने, सोचें, समझें और अगर आपको भी लगे तो ज़रूर इस पहल की ओर आगे की ओर बढ़ें। तो फिलहाल दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। फिर होगी आप सभी के साथ मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: गोरिया
1: आकर,
0: गोरिया गोरिया आकर, आ गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
6: ओए बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? नमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार नमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
8: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
5: और अभी उतर के लेके जाओ, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार दोस्तों, प्रेम, विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो मंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, तो जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: गोरिया
1: गोरिया
0: गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
4: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
3: देखिए भाई साहब आप कौन है?
4: जी मैं इसका बाप हूँ।
3: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
5: जी नहीं।
3: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
6: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
3: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं।
3: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवा तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो
5: गई। बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही खास जानकारी के साथ इस बहुत ही खास कार्यक्रम में आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। जी दोस्तों, मेरे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम हर हफ्ते आप सभी सुनते हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास बातचीत में, खास कार्यक्रम में आप सभी के साथ।
1: थैंक यू रुचिका, और अच्छा लगता है जब हम अपने हौसलों को परवाज देते हैं यहाँ आकर नई जानकारियों के साथ। और मुझे लगता है कि आज के समय में जानकारी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचनी भी चाहिए। बिना जानकारी के हम कई बार कई तरह की मुसीबतों में फंस जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि उन मुसीबतों से, उन समस्याओं से हम कैसे बाहर आएं। तो एक ये साझा प्रयास है हम सभी का, और मिलजुल कर हम अपने दोस्तों के साथ ही साझे प्रयास को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ मनोरंजन का तड़का भी हम लगाएंगे इस कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो रूमा मैम हर बार जो है आपके लिए बहुत खास जानकारियां लेकर आते हैं आपकी अवेयरनेस से जुड़ी हुई, तो आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत खास ये बातचीत सतर्कता से जुड़ी आप सभी के लिए रहने वाली है। तो क्या खास आज के कार्यक्रम में रहने वाला है ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपने इस बहुत ही खास कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान के साथ। और आप सभी को बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में रूमा जी के साथ जुड़ेंगी हमारे बहुत ही एक खास अनाउंसर ज्योति पठानिया जी। तो आज का ये कार्यक्रम आप हमारे इन खास मेहमानों के साथ सुनने वाले हैं और इस बातचीत को जानने वाले हैं, इस जानकारी को खुद तक पहुंचाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपनी बातचीत को कंटिन्यू करते हैं।

0: दोस्तों बहुत ही इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और आज हमारे साथ ये उड़ान भरने को तैयार हैं ज्योति जी, जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इनकी आवाज, इनकी मधुर सी हंसी जो है वो वैसे ही कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है। तो मनोरंजन का तड़का, मैंने इसीलिए कहा था हमारे कार्यक्रम में मनोरंजन का तड़का लगेगा, क्योंकि जहाँ ज्योति जी होती है वहाँ मनोरंजन भी होगा और जानकारियाँ भी बहुत पुख्ता होंगी।
1: बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मेरे ऊपर दिए रुमा जी, और थैंक यू आपका, रुचिका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रुमा आपका भी धन्यवाद। और अब कर लेते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बात कर लेंगे आज हम, बात करने वाले हैं मानव तस्करी के बारे में।
0: बिल्कुल।
1: और रुमा ने जैसा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, देना तो मुझे चाहिए था उस तरह से वैसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप तो रूमा को पहले से जानते ही हैं, तो ज्यादा नॉलेज जो है वो रूमा को है, हमने तो सिर्फ उनसे जानना है, उनसे कुरेदना है। तो आप पहले तो ये बताएं कि जो ये मानव तस्करी है इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, मतलब बच्चों का, लेडीज का, या फिर और हमारे युवा वर्ग भी है, तो कितने लोग आ जाते हैं इसके अंतर्गत?
0: थैंक यू ज्योति जी। पहले तो मैं बात करूंगी तस्करी के बारे में। तस्करी के बारे में इसको हम स्मगलिंग से भी जोड़ के देखते हैं। स्मगलिंग कई प्रकार की होती है, आजकल इसको एक नया नाम भी इसके साथ, स्मगलिंग के साथ जोड़ा गया है, वो है ट्रैफिकिंग। जब इंसानों का व्यापार होना शुरू हो जाता है, उनका किसी भी पर्पज से उनका अगर हम लेन देन करते हैं, चाहे वो जानवर है या इंसान है, किसी अपने स्वार्थ के लिए पैसा के लेन देन, जब इंसानों की खरीद फरोख्त हमारी शुरू हो जाती है, तो वो मानव तस्करी में आ जाता है। और इस ये एक बहुत बड़ा अपराध है। हमारे संविधान में भी मानव तस्करी को जो है वो असंवैधानिक घोषित किया गया है, और यहाँ पे अनुच्छेद 23 में इसे जो है एक बहुत ही घटिया किस्म का या तुच्छ किस्म का अपराध माना गया है। क्योंकि आप देखिए, आजकल के जिस समय में हम जी रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो घटित हो रही हैं। हम स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं, और अपने स्वार्थ के लिए हम हर एक तरह का अनैतिक कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसमें हम किसी का, आपने पूछा मुझसे कि किस किस तरह के कार्यक्रम आते हैं, तो मानव किस तरह की तस्करी जो है वो पाई जाती है। तो मानव तस्करी में बहुत सारी चीजें हैं। आजकल आपने देखा होगा अखबारों में भी कई तरह की न्यूज आ रही है, टीवी चैनल्स भी अगर हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये सुनने को मिलता है कि फलां जगह पे किडनैपिंग हुई है, अचानक से बच्चे गुम हो रहे हैं, महिलाएं गुम हो रही हैं, और पूरे देश में ये जो विषय है वो चर्चा का विषय बना है, और बहुत ही गंभीर विषय भी है ज्योति जी, क्योंकि आजकल इंसान कैसे गायब हो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतनी गुमशुदगी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अनैतिक तरीके से युवतियों को, महिलाओं को या बच्चों को यौन व्यापार में धकेला जा रहा है, मानव अंगों की खरीद फरोख्त होती है, उसके लिए भी बच्चों का अपहरण या व्यक्तियों का अपहरण हो जाता है। कई बार हम घरेलू श्रम के लिए, कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी तस्करी हुई है, घरेलू श्रम में हम किसी व्यक्ति को जोड़ लेते हैं, उसके जो भी हमारे पास उस व्यक्ति को ला रहा है या हम किसी को काम पे लगा रहे हैं, तो उसके बदले में उसके पेरेंट्स को, बच्चों के स्पेशली बच्चों के केसेस में होता है, पैसे दे दिए जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि आपके बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा का जिम्मा जो है वो परिवार अपने ऊपर ले लेता है, जिस परिवार में वो बच्चा के काम कर रहा है। वो बच्चा कहाँ से आया, किस तरह से आया, और देखिए जब हम बच्चे को अपने परिवार में ले आए हैं, घर का काम काज उससे करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये मानव तस्करी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। क्योंकि एक बच्चे को परिवार से ले आए हैं आप, और उसके पेरेंट्स को उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। वैश्यावृत्ति इसमें आती है, यौन गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने के लिए बच्चों का खरीद फरोख्त की जाती है, और बॉर्डर एरिया जो है हमारे, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह की जो कारोबार है वो बहुत फलता फूलता है, और ज्यादातर जो प्रवासी लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें पता नहीं है, वहाँ के कई बार हमें आजीविका जीने के लिए क्या होता है, हम गलत हाथों में पड़ जाते हैं, और हमारी मजबूरी का फायदा उठा के जो लोग हैं वो हमारा व्यापार करते हैं, तो मानव तस्करी में ये सब चीजें शामिल हैं।
1: बहुत कुछ है भाई, हमारी तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुनकर के। और खास करके आपको भी पता ही होगा कि अब आजकल जो एप्सटीन फाइल्स का जो मामला है, जब से वो खुला है तब से तो हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं, और इसके बाद जब हमें देश की राजधानी से खबरें आना शुरू हो गई कि वहां पर महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं कुछ तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन आधिकारिक तौर से पुष्टि ये आई थी कि नहीं ये अफवाहें हैं और ये फैलाई जा रही हैं। तो भी मन कुछ समझ में मतलब आ नहीं रहा था मन को समझ, क्योंकि मन थोड़ा है ना हमारा चंचल ही होता है, विचलित होता रहता है, और खास करके तब जब कि हमारे खुद के अपने बच्चे हों और छोटे बच्चे हों, और छोटे बच्चे जो है वो अपने घर में हो या फिर जो अपने हमारे युवा बच्चे हैं वो बाहर उन स्थानों पर गए हुए हों किसी भी वजह से, पढ़ने की वजह से या नौकरियों की वजह से, तो थोड़ा सा चिंता होनी स्वाभाविक होती ही है।
0: बिल्कुल, और ये चिंता जायज भी है ज्योति जी, क्योंकि आप देखिए कि देखते ही देखते अचानक से बच्चों का, महिलाओं का गुम हो जाना, ये अपने आप में हमारी ही नहीं पूरे राष्ट्र की चिंता है। और इस समय सभी इसके लिए जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से अचानक से, क्योंकि जब युवा बच्चे जब घर से जाते हैं कहीं काम करने और उनका आता पता नहीं चलता है, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि शायद कहीं भटक गए हैं, कहीं घर परिवार को छोड़कर किसी के साथ रहना शुरू कर दिया है। जैसे आजकल के टाइम की बात देखें तो लिव इन में रह रहे हैं, और फिर बच्चे संपर्क तोड़ देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, संपर्क उन्होंने मजबूरी में तोड़ा होता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हमारे बच्चे को मजबूरी में लिव इन में रहने के लिए मजबूर किया हो किसी ने। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मानव तस्करी को दायरे में रखकर हम देखते हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि आजकल आपने देखा है बाहर के जो है लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे ढाबों में काम कर रहे हैं, और जब बच्चे से बात की जाती है, जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की जो टीम है, जब हम ऐसे बच्चों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे माता पिता या नेपाल में हैं या बिहार में हैं या यूपी में हैं, और वो बच्चा यहाँ पे अकेला रह रहा है, और उसके बारे में पूछा जाता है तो उसको क्या मिलता है, तो सिर्फ उसको खाने के लिए रोटी दी जाती है, सोने के लिए एक बिस्तर दे दिया गया है, वो उसकी क्या क्वालिटी है उसका कोई ध्यान नहीं है। और बच्चे को ये भी नहीं पता है कि उसको यहाँ आए कितना टाइम हो गया है, उसके माता पिता उसको लेने वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे।
1: और बच्चों को शायद ये सिखा भी दिया जाता है कि अगर कोई तुमसे पूछे आकर के कि तुम कितने साल के हो, तो उन्हें उस तरह से ट्रेन किया जाता है, उन्हें मतलब थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने ऐसा बोला और ऐसा नहीं बोला तो हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे, या तुम्हारे माता पिता को बोलेंगे कि ले जाओ, या कुछ भी मतलब।
0: बिल्कुल, बच्चों के मन में एक डर पैदा कर दिया जाता है ताकि वो झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनसे अगर हम बच्चों के श्रम की बात करें तो चाइल्ड लेबर जो है वो भी बैन है ऑल ओवर इंडिया में, हम कहीं भी किसी 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को डरा धमका के इस तरह के काम लिए जाते हैं। और बच्चा डरा होता है क्योंकि उसके माता पिता तो पहले ही उसके पास नहीं है, आश्रय उसके पास है नहीं है, नियोक्ता जिसने उसको काम पे लगा रखा है वही उसका सर्वे सर्वा है, तो उसको उसकी बात माननी पड़ती है, और डर के साय में जीता हो ये बचपन कहाँ जा रहा है वो हम सभी समझ सकते हैं।
1: तो रुमा जी, ये बहुत बातें जो है संजीदा होती चली जा रही हैं, हमें लगता है एक ब्रेक की जरूरत है, तो एक गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत। हमारा कार्यक्रम जो है वो है मेरे हौसलों की उड़ान, और इस समय आपके सामने है रूमा गुलेरिया जी, जो कि DCPU यूनिट में है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जी। और आए दिन ऐसी समस्याओं से दो चार ये होती ही रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं मानव तस्करी के बारे में। तो मानव तस्करी कैसे पहचाने रुमा कि मानव तस्करी यहाँ पर हुई है या होने वाली है, तो क्या क्या लक्षण होते हैं इसके?
1: देखिए, अगर साधारण तौर पर हम देखें तो हम नहीं जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई विक्टिम है मानव तस्करी का। पहले तो हमें विक्टिम की पहचान करनी है, और उसके लिए मैंने पहले ही आपको एक बात कही कि छोटे बच्चों को हम रख लेते हैं और काम के लिए, और जब हम पूछते हैं तो बच्चे को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तो वही एक चरण हमारा पहला शुरू हो जाता है किसी भी बच्चे को जानने के लिए या किसी भी महिला को कि वो मानव तस्करी का शिकार है या नहीं है। और इस तरह के जो लोग होते हैं थोड़े अपने आप में डरे से रहते हैं। जब हम किसी से सामान्य तरह से जब बात करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों की एक और जो क्वालिटी है वो देखा जाए तो अनपढ़ता हमारे देश में अभी भी व्यापक तरीके से बहुत सारी एरिया जो है जहाँ पे अभी शिक्षा का अलग नहीं जागा है, और गरीबी सबसे बड़ा कारण है, और जिसकी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जब भी इनसे आप बात करेंगे तो वो कांपते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और हमेशा ही वो इस ताक में रहते हैं कि कहीं हमारा मालिक हम किसी से बात कर रहे हैं तो सुन ना ले। और अभी हाल ही में 2 या 3 साल पहले हमारे पास एक मैटर आया था, बिहार का कोई दंपति थे जिन्होंने अपने बच्चे को हमारे यही स्थानीय एरिया में किसी के घर में पशुशाला में काम करने के लिए छोड़ दिया था, और बच्चे की आयु मात्र 13 साल थी। और जो उस बच्चे की कंडीशन क्या थी कि वो सारे काम करता था, गाय का दूध निकालना, गोबर उठाना, हर तरह के वो काम, पूरा सुबह 4 बजे उठता था और उसकी दिनचर्या रात को 9-10 बजे खत्म होती थी। गौशाला का काम करने के साथ साथ वो पूरे घर के काम भी करता था, लेकिन उसको रोक रखा था कि वो किसी से बात नहीं करेगा, घर में कोई मेहमान आता था वो उनके सामने नहीं आता था, और बाजार में उसको अगर वो जाता भी था तो उसके साथ घर का कोई ना कोई सदस्य होता था ताकि वो इस तरह की अपने बारे में किसी से बात ना कर सके। इस बारे में उनके पड़ोसियों ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया और उस बच्चे की जानकारी दी, और जब टीम वहां पे पहुंची है तो उन्होंने देखा और उस बच्चे से बात की, तो वो 2 दिन तक तो बच्चा वही बोलता रहा कि मैं यही रहता हूँ, यही मेरे सब कुछ है। उन्होंने बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन भी करवाया था लेकिन वो स्कूल में नहीं जाता था। और जब उनसे पूछा हमने कि आप इस तरह से क्यों है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ये पढ़ना नहीं चाहता है। फिर बच्चे से पूछा गया तो उसके पास ना तो उसका आधार कार्ड था, ना ही उसकी कोई और जानकारी बच्चे के पास थी, उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, क्योंकि आई थिंक वो बच्चा 6 या 7 साल की उम्र से उनके पास रह रहा था और इतने सालों से वो अपने माता पिता से नहीं मिला था, और बच्चे के मन में एक डर था कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। और फिर उसको रेस्क्यू किया, उसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो बिहार पूर्णिया के रहने वाले माता पिता थे। उनको बुलाया गया तो जब उनकी कंडीशन देखी गई तो वो 6 या 7 बच्चे उनके ऑलरेडी थे और ये बच्चा सबसे बड़ा था, तो उन्होंने बोला कि हमें जो है इन्होंने पैसे दिए थे बदले में कि हम आपको 50,000 रुपया दे देते हैं। यहाँ पे उनका काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने वापस जाना था।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने इस बच्चे को हमारे पास छोड़ जाइए, तो उन्होंने 50,000 रुपया लिया और बच्चा अपने पास रख लिया, माता पिता को दे दिए 50,000। तो वो मानव तस्करी का ये जो मुद्दा जब हमारे सामने आया तो उस बच्चे को सामान्य करने में बड़ा टाइम लगा। उस बच्चे के पास वो बच्चा तब तक नहीं बोल पाया हमारे साथ जब तक हमने उसको विश्वास नहीं दिलाया कि आपके रहने खाने पीने का और सारी सुरक्षा का प्रबंध जो है वो विभाग करेगा। उसके बाद उस बच्चे ने सारी बातें बताई, उसके साथ क्या होता था, माता पिता कैसे चले गए। तो देखो, इस मैटर में माता पिता भी अपराधी थे।
0: बिल्कुल हाँ।
1: और जिन्होंने उन माता पिता की मजबूरी का फायदा उठाया वो तो अपराधी थे।
0: यहाँ पे बस यही जो बात अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया बताया जो रियल स्टोरी थी, तो ये समझ में आता है कि मानव तस्करी जो होती है ये कई बार तो नोइंगली भी होती है।
1: बिल्कुल।
0: कि माता पिता भी जानते हैं, घर वाले सब जानते हैं, और पैसे के लेन देन से ये सब कुछ होता है। लेकिन कई बार वैसा होता है ना, जब
1: कई बार व्यक्ति को खुद को नहीं, बच्चों के ही मैटर में बात नहीं करूंगी मैं, बड़ों की भी अगर बात करूं तो उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि हमारा जो है वो अनैतिक व्यापार हो रहा है। जो विक्टिम है उसको खुद को नहीं पता होता है, लेकिन जब उसको इस बारे में समझाया जाए तो वो समझ जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो जानकारी है, यही हमारा मकसद भी है इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि हम अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि वो जाने कि अगर उनके आसपास इस तरह की कोई घटना तो नहीं हो रही है। और हाल ही में हमारे जिला में बच्चों की तस्करी के जो मैटर सामने आए, तो उसमें जो ऐसे लोगों को टारगेट किया गया, ऐसे माता पिता को जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वो अच्छा। काफी समय से संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं हमें बच्चा चाहिए, और ये जो मानव तस्करी करने वाले गिरोह होते हैं ये नजर रखते हैं उनके अलग अलग विभागों में, अलग अलग जगहों पे उनकी पैठ होती है और उनकी पहुंच रहती है, और वो ऐसे माता पिता को अपना निशाना बनाते हैं जिनको बच्चों की जरूरत है।
0: अच्छा।
1: और अस्पताल में उनका अपना उनकी पहुंच बनी रहती है, कौन सी महिला है, जैसे ये टारगेट करते हैं गरीब लोगों को जिनके पास पहले से ही 2-3 बच्चे हैं और अपने आने वाले बच्चे को वो पालना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, उन माता पिता से जिनको बच्चा चाहिए उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं और उसके बाद वो वहां पे उनको बच्चा हैंड ओवर कर देते हैं।
0: जी, यहाँ पर ना मैं आपसे एक गीत के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद मैं आपसे एक बात बताऊंगी जो कि बहुत ही शॉकिंग है, शॉकिंग इन द सेंस कि हम ओपनली बहुत कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले हो जाए एक
1: बिल्कुल
0: म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो श्रोताओ, इस गीत के बाद हम फिर से आ जाते हैं अपनी बातचीत पर। रूमा, बड़ी ही, मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी संजीदा बात, बड़ी ऐसी बात जिसको सुन करके लोग बिल्कुल शैटर्ड हो जाएं, जो कि वाकई में कुछ सोचते हैं, समझते हैं। तो बात हम कर रहे हैं आज मानव तस्करी के बारे में, और रूमा जी ने बहुत कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैंने आपसे गीत से पहले कहा था कि मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ।
1: जी,
0: मैंने एक दिन, जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो YouTube भी देखते हैं और भी बहुत सारे मीडियाज हैं, देखते हैं हम Instagram, Facebook, तो YouTube पे मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, और वो ओपनली अपने छोटे बच्चे को, जो अभी अभी शायद पैदा ही हुआ है, कुछ ही महीनों का है, वहां पर वो कह रहा है कि जिसको चाहिए वो ले लो इतने पैसे दे करके। ये कैसे है, और इसके ऊपर क्या कोई लगाम नहीं रख सकती क्या, इसके बारे में मतलब प्रशासन को बिल्कुल नॉलेज नहीं, वो उनकी नजर में नहीं आया, अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो, मतलब ये किस तरह से होता है? ओपनली जब सब काम हो रहा है तो फिर हम कहाँ, हम ये न्याय संहिता और इन सबके चक्करों में पड़े हुए हैं, तो ये कैसे?
1: जी, जी, आपका जो सोच और जो सवाल है वो बहुत ही बढ़िया भी है और गंभीर मुद्दा भी है। ये देखिए, ओपनली हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा ले जाइए, और इस तरह से वो, हम इसको पार नहीं सकते हैं, तो पहले तो मैं, जो भी यूट्यूबर या जो भी सोशल मीडिया वाले व्यक्ति हैं आजकल के समय में हम सभी यूज कर रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह यही है कि अगर आप अपने बच्चे को पार नहीं सकते हैं, आप सक्षम नहीं है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकें, तो इसके लिए जो हमारी भारत वर्ष की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे बच्चों की अडॉप्शन की एक एजेंसी है जिसको हम चाइल्ड अडॉप्शन एजेंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अपने बच्चे को जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी को बोलें तो देखिए, ये अपने आप में अपराध है। हमने पहले ही कहा है कि बच्चों की खरीद फरोख्त है, या बच्चों को इस तरह से निराशित कर देना, ये अपने आप में क्राइम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चे को नहीं पाल सकते हैं, तो हमारी स्टेट अडॉप्शन एजेंसी भी यहाँ पे काम कर रही है, आप यहाँ पे भी बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा इस तरह के जो अनवांटेड बच्चे होते हैं, जैसे ही कोई नवजात बच्चा, हमने कई बार सुना है या पढ़ा है या देखा भी है कि बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया या कहीं मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दिया, तो ये भी एक क्राइम है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम, हमारे जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला में पालना रखा गया है, जो पेरेंट्स बच्चे को नहीं रख सकते हैं या किसी भी वजह से, समाज की बदनामी की वजह से या अपनी गरीबी की वजह से वो बच्चा नहीं पाल सकते हैं, तो वहाँ पे छोड़ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अब क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट अडॉप्शन एजेंसी जो है वो खुल गई है, तो वहाँ पर भी हम अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास हम अपने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं कि हम इस बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है, तो आप सरकार को दे दीजिए। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं ऐसे माता पिता की जो बच्चा चाहते हैं, कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने हर तरह की मेडिकल सुविधाएं भी, जो भी उनको मिल सकती थी, उनके माध्यम से भी उन्होंने बच्चे के लिए कोशिश की, लेकिन वो बच्चा नहीं पा सके, और हमारे पास उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रहती हैं। तो झाड़ियों में फेंकने की बजाय या यूं ही कहीं भी बच्चे को मार देना जो है वो गलत है, आप हमें दे दीजिए, हम उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे और उस बच्चे को एक अच्छे माता पिता मिल जाएंगे।
0: मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि शायद जो लेमैन है, आम आदमी है, और वो पहले से ही अपनी स्थितियां ही नहीं संभाल पा रहा है, गरीबी में है जैसा आपने कहा, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार जितना भी सारी योजनाएं चला रही है उस तक पहुंचती होंगी। तो ये जो उस तक पहुंचाने का भी कोई रास्ता सरकार निकाले, अगर कि अच्छी तरह से पब्लिसिटी की जाए।
1: देखिए, इसके लिए समय समय पर जो है वो विभाग पूरे प्रदेश में जो है हमारे कैंप लगते हैं, ग्राम पंचायतों में कैंप लगते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक जो है वो ये जानकारी पहुंचाई जाती है, और आशा वर्कर जो है हमारी हर गाँव में काम कर रही है, तो उनकी नजर में रहता है कि कौन सी महिला जो है वो प्रेग्नेंट है या कौन सी परिवार जो है वो बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अबॉर्शन अपने आप में पहले से ही एक क्राइम है, और आशा वर्कर की नजर में ये चीज रहती है, और अगर अबॉर्शन का समय है तो समय पर करवा लिया जाए। अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए कई बार महिलाएं जो हैं वो टाइम अधिक होने के बाद भी अबॉर्शन करवाती हैं, ऐसे में उनको सलाह यही दी जाती है आंगनबाड़ी वर्कर और जो आशा वर्कर के माध्यम से भी उनको बोला जाता है, अगर वो बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं।
0: रूमा, इसमें बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि देखिए, ये सारी जो जानकारियां हैं हम मानते हैं ये ग्राम पंचायत स्तर तक जाती हैं, आपने कहा,

0: लेकिन होता क्या है ना कि ये जो बाहरी प्रदेश से हमारे यहाँ पे लोग आते हैं ना, ज्यादातर इनके साथ ये चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब जैसे आपने अब वो एग्जांपल जो दिया था कि उसमें वो लोग वापस जा रहे थे और जाते जाते वो अपना बच्चा जो है वो छोड़ गए, तो शायद वैसा कुछ होता होगा। और वो लोग तो अपना दिन में काम पे निकल जाते हैं, शाम को अपने घर वापस आते हैं, वो कहाँ ये सब मीटिंग्स अटेंड करते हैं ना। तो क्या प्रदेश सरकार हमारी जो है वो उन लोगों तक भी पहुंच रखती है या रखनी चाहिए?
1: बिल्कुल रखती है। हर एक पंचायत में जो हमारे पंचायत प्रधान हैं और वार्ड मेंबर हैं और आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं, वो मैं ये कहूंगी कि हमारी हर एक पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। और जो भी पंचायत में या वार्ड में व्यक्ति रहता है, चाहे वो किराएदार है, इवन झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, उनका भी रिकॉर्ड रहता है, वहाँ पे भी समय समय पर मेडिकेशन या जो भी जरूरत रहती है लैक्टेटिंग मदर के लिए, या जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन को जो इंजेक्शन समय समय पर दिए जाते हैं, आयरन कैल्शियम की गोलियां जो वितरित की जाती हैं, वो आशा वर्कर के माध्यम से की जाती हैं। लेकिन वही है कि कई बार क्या होता है, आजकल का जो समय है हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, बहुत सारे गलतियां भी हम कर लेते हैं। और हमारे जो माता पिता हैं, कई बार अगर हमारे बच्चे से कोई गलती हो गई है, कोई अनमैरिड महिला है या इस तरह की कोई बच्चा सामने आ जाता है, तो ज्यादातर उन्हीं बच्चों के साथ ही होता है कि उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाए या मार दिया जाए या फिर गुप्त तरीके से उसको किसी को बेच दिया जाए। मैं दे देना तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की चीजें जाती हैं तो हम मानव तस्करी की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, थोड़े से अगर आर्थिक लाभ आपको मिल रहा है तो हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, उसी बात को वहीं पे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है और पैसे के बदले में वो बच्चा खरीद लिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही संगीन अपराध है। और आप अभी भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव आया है, तो उसमें धारा 143 और 144 में जो इसमें कड़े प्रावधान किए गए।
0: धाराओं के बारे में हम जरूर बात करेंगे रूमा जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम मानव तस्करी की बात करते करते शायद बीच में विषय से थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: भटक भी जा रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, लेकिन ये सारे आपस में जुड़े हुए विषय हैं, तो इसलिए ये सब बातें करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में एक ब्रेक लेना भी तो जरूरी हो गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर हाजिर हो गए हैं हम करने सब आप सभी से बातचीत। और फिलहाल तो रूमा जी से बात हो रही है 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। कार्यक्रम है मेरे हौसलों की उड़ान। तो थोड़ा तो हम उड़ लिए हैं रूमा जी के साथ और अब हम बात करेंगे मानव तस्करी के बारे में। तो ये जो धाराएं होती हैं ये क्या क्या हैं, किस किस उसमें क्या क्या सजा हो सकती है लोगों को?
1: मानव तस्करी अधिनियम को बहुत ही अब स्ट्रिक्ट किया गया है। 1986 में यह अधिनियम आया था, उसके बाद इसमें 2 या 3 बार अमेंडमेंट हो चुकी हैं, लेकिन सन 2023 में इसमें फिर से बदलाव किए गए। अब जो है इसमें सजा जो है वो बढ़ा दी गई है। धारा 143 और 144 जो है वो मानव तस्करी के खिलाफ कड़े उपबंधों का उसमें शामिल किया गया है। उसमें इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी महिला को या किसी बच्चे को श्रम के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए या मजबूर किया जाता है किसी भी काम के लिए और उसके बदले में पैसे का लेन देन अगर वहाँ पे शामिल हो जाता है तो वहाँ पे सजा का प्रावधान है। ये पहले जो थी सजा 5 साल तक थी, अब इसको बढ़ा के 7 साल से लेके 14 साल या फिर आजीवन कारावास और साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसके लिए ये जरूरी भी था क्योंकि आजकल मैंने पहले भी कहा कि कई बार जो व्यक्ति है उसको खुद को ही नहीं पता होता है कि उसकी तस्करी हो रही है। आजकल बेरोजगारी जो है व्यापक स्तर पर है, लोगों को झांसा दिया जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह से हमारे सामने आ जाते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम इसके बदले में आपकी नौकरी लगवा देंगे। और कई तरह के आपने देखा होगा हमारे सामने आए थे मुद्दे कि लोगों को विदेश में नौकरी का झांसा दिया गया और उनसे काफी मोटी रकम ली गई और उनको विदेश में भेजा गया और वहां पे उनको बंधक बना लिया गया या तो घरों में काम के लिए या कहीं पे भी। और उन बच्चों का घर वापिस लौटना बहुत मुश्किल था, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए, बड़ी मुश्किल से उन लोगों को वापिस लाया गया। तो बीच में ये जो एजेंट थे ये भी एक तरह से मानव तस्करी का ही काम कर रहे थे और मोटी खासी रकम लेके एक परिवार की जीवन भर की कमाई जो है वो माता पिता अपने बच्चे को सेटल करने के लिए लगा देते हैं। लेकिन हम नौकरी के लालच में या देखिए लालच तो नहीं कह सकती मैं इसको, हमारी जरूरत है हर एक परिवार को अपने बच्चे को या व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने के लिए रुपए पैसे की तो जरूरत है। और जब हमें प्रलोभन दिया जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी, हमें बोला जाता है कि आपसे ये काम लिया जाएगा और उसके बदले में हमें कुछ और काम करवाया जाता है, तो वो भी मानव तस्करी में ही अब शामिल कर लिया गया है जी। इस अधिनियम में एक और भी जो बात है वो विशेषता जोड़ी गई वो ये थी कि अगर किसी बच्चे की तस्करी की जाती है या किसी महिला या किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए धकेला जाता है तो भी ये सजा जो है अब बढ़कर 14 साल या उम्र कैद में बदल दी गई है। और साथ ही साथ भिक्षावृत्ति के लिए अभी हमारा तो यहाँ जो हिमाचल की हम बात करें तो ये इस तरह के अपराध कम हैं, लेकिन कई जगहों पे क्या होता है बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, उनके अंग तोड़कर उनको भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है या फिर अंग निकाल के बेच दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनको इसमें शामिल करना बहुत जरूरी था और जो हमारा जो कानून है उसको सख्त बनाया गया ताकि मानव तस्करी के ऊपर रोक लगाई जा सके।
0: रोमा जी जैसे आपने हिमाचल की बात की, मैं भी अभी इसी बात पर आना चाह रही थी कि आप तो कांगड़ा में ही काम करती हैं
1: जी,
0: तो क्या वाकई में हमारे यहाँ पर ऐसे जो ये मानव तस्करियां हैं इसके केसेस कम है?
1: अगर पूरे देश की हम बात करें और उत्तर प्रदेश हरियाणा या राजस्थान के साथ हम कंपेयर करें तो
0: मतलब
1: हिमाचल में केसेस कम है। अभी हाल ही में हमारे सामने इस तरह का मुद्दा आया था जहां एक बच्चे को बच्चे की खरीद फरोख्त हुई है और इस तरह के कई सारे केसेस जो हैं वो हमारे हिमाचल में भी जिला कांगड़ा में भी दर्ज हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस तरह के अपराध से बचे हुए हैं। भिक्षावृत्ति हमारे हिमाचल में भी होती है, बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ है हमारे पास और जब भी नवरात्रे या कोई भी पर्व आते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियों को चुनरी उड़ा के बिठा दिया जाता है और वहां पे उनके माता पिता खुद ये सब कर रहे हैं। तो भिक्षावृत्ति के लिए बच्चे को मजबूर करना ये सब उसी में श्रेणी में भी आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हम इससे बचे हुए हैं, हमारे पास साथ भी अपराध हमारे यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों की वजह से कुछ हद तक सीमित है।
0: और ये भी जरूर होगा कि हर एक अपराध का जो तरीका होगा ना वो अलग अलग होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो गिरोह होते हैं इस तरह के उनकी अपनी तरीके होते हैं, उन्होंने अपने बचने के लिए भी काफी सारे मानदंड रखे होते हैं। बचने के तरीके तो सबसे पहले सोचते हैं, क्राइम करने वाले की मंशा ही ऐसी होती है कि अगर वो कहीं किसी अपराध में संलिप्त है और फंस जाता है तो उसने खुद को कैसे बचाना है। तो ये तो सारी चीजें हमारे साथ चल ही रही है। देखिए ज्योति जी, मुद्दा ही हमारा ऐसा है क्योंकि ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं, हम सामान्य बातें करेंगे। और आजकल के समय में जिस तरह से साइबर अलर्टनेस हमारे लोगों में जागी है, हम बच्चे बूढ़े हर कोई फोन के साथ जुड़ा है, इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहां पर हमें अच्छी चीजों के साथ साथ जो गलत चीजें हैं वो भी सिखाई जाती हैं। इवन मैंने देखा है कई बार हम नेट पे सर्च करते हैं तो हमें चोरी करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। तो देखिए बच्चे फिर इस तरह की चीजें सीखेंगे और अपराधों का तो जन्म होगा ही।
0: जी बिल्कुल। तो रुमा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए अब तो हम लोग वैसे कैसे जमाने में पहुंच गए, अभी थोड़े दिन पहले ही एआई की बात की हमने इसी स्टूडियो से, और अगर हम इस समय में भी अपने आप को नहीं संभाल पाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। और लोग हमारा मिसयूज ऐसे ही करते ही रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो जो बड़े हैं, व्यस्क हैं, युवा हैं, वो तो समझ सकते हैं और इस वो खुद ही फंसना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, परंतु अगर निकलना चाहते हैं तो हजार तरीके होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मोबाइल उनके पास होता ही है, तो आप अपना देखिए कि आप किस तरह से निकल सकते हैं। लेकिन बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों के पास भी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। बेशक उनके पास मोबाइल नहीं होगा क्योंकि जब ये तस्करी इस तरह से की जाती है, बच्चों को इस तरह से रखा जाता है जैसे हमने अभी बात की, तो उनके पास मोबाइल होना तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो अपना खोज सकते हैं तरीका कि किस तरह से, उतने व्यस्त तो इतने तो वो समझदार होते ही हैं कि कहीं से कोई मोबाइल उनको मिला और उन्होंने उस पर कोई नंबर डायल किया ताकि वो सही व्यक्ति तक पहुंचे उनकी बात और वो वहां से उसे उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, कोई नंबर आप बता सकेंगी?
1: बिल्कुल ज्योति जी।

0: सबसे पहले अगर इस तरह के क्राइम हो रहे हैं या इस तरह का कोई विक्टिम पाया जाता है तो उसका रेस्क्यू बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी जानकारी भी प्रशासन तक होना बहुत
1: जरूरी है। कोई और दूसरे व्यक्ति भी तो दे सकता है ना?
0: बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर पे हम कॉल कर सकते हैं, और ये बड़ी आसानी से याद हो जाता है, और हर कोई व्यक्ति 100 नंबर पे कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा सकता है अगर कोई व्यक्ति कहीं पे भी हमें विक्टिम नजर आता है।
1: एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी होता है।
0: बिल्कुल, और बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर है 1098, और इसके ऊपर आप कॉल करके अगर कोई बच्चा खुद भी कर सकता है बात, और कोई व्यक्ति अगर देख रहा है किसी बच्चे को गलत काम में लगाया गया है, फोर्सफुली उससे लेबर का काम किया जा रहा है या फिर किसी वजह से उसकी खरीद फरोख्त हुई है, तो 1098 पे भी आप बातचीत कर सकते हैं, उस बच्चे की जानकारी दे सकते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी रहती है ज्योति जी, जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसकी जो
1: आइडेंटिटी
0: जो है बिल्कुल वो गोपनीय रखी जाती है ताकि उसके ऊपर किसी तरह की कोई आंच ना आए, क्योंकि आप जानती हैं आजकल कोई भी किसी के लिए
1: मैटर में फंसना नहीं चाहता है,
0: क्योंकि हर कोई सोचता है हम अपनी जिंदगी शांति से जी रहे हैं तो फिर क्यों हम किसी के पचड़े में पड़े।
1: सब लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारी तो देखो हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरह की जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हमारे दोस्तों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वो भी ये जानकारी अपने दोस्तों तक रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, और उनको लगता है कि कोई व्यक्ति मानव तस्करी का शिकार हो रहा है तो उसकी हेल्प वो कैसे कर सकते हैं, वो सारे ही तरीके हमने लगभग अपने दोस्तों को बता दिए हैं तो उस माध्यम से वो कर सकते हैं और वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जिला बाल संरक्षण कार्यालय है वहाँ पे भी संपर्क किया जा सकता है, और आप डायरेक्ट भी हमसे बात कर सकते हैं, तो हमारा नंबर है 9418431223। आप ईमेल के माध्यम से भी जानकारी जिला बाल संरक्षण कार्यालय तक पहुँचा सकते हैं, और यहाँ का ईमेल आईडी है bcpokangra@gmail.com।
1: धन्यवाद उमा जी इतनी अच्छी जानकारी के लिए। आज का ये सेशन अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारी इससे मिली होगी, और कहीं पर भी आप ऐसा कोई भी कृत्य होते हुए देख रहे होंगे, आपका मानसिक जो है या आपका मन आपको ये कहता होगा कि सामने में कुछ चल रहा है जिसमें आपको डाउट हो रहा है, तो जरूर जरूर उस व्यक्ति की मदद करने के बारे में सोचिए, उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश कीजिए, और सही जगह पर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए थे, और कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान अब यहीं पर समाप्त होता है। इजाजत चाहते हैं।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपये का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत

538 जबकि निफ्टी 24231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोरिया
1: गोरिया गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: ओए बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: तो कटेगा भैया तेरे।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

श्रोतो 91.2 MHz ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं पार्टी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: mixing in the house.
1: 14.91 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

0: गोरिया
1: गोरिया गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए।
5: देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
5: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरे,
5: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
7: रोड किसी के बाप का नहीं।
5: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो वंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

कानवी देश मतलब 2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिमेश शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्ने जिड़ा गल्ला बात न से तुहां तक कहाँ लेकरी चिड़े से पूछी हो न कने तुहां सारे भी अपने अपने रेडियो सेट ते अखे वखे बैठी होने न या अपना जिड़ा रेडियो सेट है से जरूर ऑन करी लिया होना है क्योंकि तुहां सारे जो ही जिड़ा इंतजार रहिंदा है कि कालू दिया

0: दो बजते ही ना कने कालू दिया तो हाँ सारे ही इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ते न। इंतजार की जड़ा घड़ी है सह तुहां वास्ते खत्म है कने पहले जड़ा श्रोता न से यहाँ कने जुड़ चुके हो न पहले कर दे तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते सती जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: जी धन्यवाद।
0: जी बरखा तो ओदियां जी थोड़ियां थोड़ियां।
1: ना ना हुण भी तो होई।
0: जी जी हुण तो होई जी।
1: ओ ठीक ठाक ना?
0: हां जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी।
1: और पतरोड़े पतराड़े खाते कि नहीं?
0: जी पतरोड़े तो खाई ले जी। तो हां खाते पतरोड़े?
1: हां खाई ले हां
0: जी। तो हाँ बनाते होने ना जी जोड़वे पतरोड़वे की जो संग्रांत हुई थी हाँ जो
1: जोड़वे पतरोड़वे की संग्रांत आई थी
0: ना। जी जी
1: सैर होनी सैर
0: जी हूँ सैरी का इंतजार है ना जी।
1: रखड़ी
0: जी नहीं पहले रखड़ी होनी फिर उसके बाद सैर होनी ना जी।
1: त्योहार शुरू हो जाने?
0: जी जी त्योहार जरा से शुरू हैं जी। तो मेघनाथ जी
1: सब ठीक ठाक?
0: जी हाँ जी ठीक ठाक हैं जी। दाढ़ी दा नवा ताजा
1: ठीक ही है? बरखा बुरखा हो रही है ना?
0: जी अच्छा बरखा बुरखा हो
1: रही है। ना ना अखे बखे ही हो रहा कपड़ा सपड़ा वगैरह
0: जी
1: मेरे आ रहे को रहे हैं मुंडू जड़ा है
0: जी जी जी
1: उन्हें तो क्या ही
0: जी जी सही है ना जी।
1: माता पाजी सुनाई भी आज मनी में से लग गया
0: जी। अच्छा भरमानी माता दा भजन सुनना है तो हाँ
1: जी
0: जी जरूर जी भजन तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। कशु तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने यहाँ पहले अपने कार्यक्रम दा आगाज कर देना इस गीत कन्ने तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

0: है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत तो जरूर शुरुआत जिड़े से तो हाँ सारे जो ही पसंद आई होनी है कने कुथी ना कुथी तो हाँ ये गीत भी जरूर ध्यान ने सुने होने हैं। वैसे भी अली इस गीत जो यानी कि कल ही जड़े से गीत जड़े से 20 अगस्त जो निकले है कने ज़रूर तुम तक मैं पहुँचाया है कने ये गीत जड़े से बड़ा प्यारा है। ये गीत जड़े से हाँ बोली सकते जड़ा हाँ दे रिश्ते न या रिश्तों का जड़ा जुड़ाव है से किस तरीके ने है अजकने दौर की गल करिए जड़ा एक दूसरे अंदर प्यार भावना जड़े से बिल्कुल ख़त्म है तो ज़रूर ये गीत अपनी जड़ा अहम भूमिका यही दर्शाता है कि रिश्तों का जड़ा जुड़ाव है या एक दूसरे अंदर प्यार भावना होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सही गीत अहाँ जो दसद पर हाँ कुथी ना कुथी इस गीते जो सोचते हैं क्योंकि हर गीत की अपनी अपनी खासियत है चाहे कोई भी गीत अहाँ सुनते हैं हर गीते की अपनी अपनी खासियत है पर हाँ किस तरीके ने गीतों का जड़ा अंदाज है या सुनते हैं या समझते हैं से यहाँ पर निर्भर करता है कने कुथी ना कुथी अपनी जड़ा पहाड़ी संस्कृति है उस जो भी अहाँ जो एक दूए जड़े से जोड़ी करी रखते हैं तो श्रोताओं तुम सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाह कन्ने जुड़ सकते कन्या कन्ने गल बात जड़े से जरूर करी सकते अगले जड़ा श्रोता न से यहाँ कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हाँ जी मैडम जी नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न।
1: हाँ जी हाँ जी वधी
0: जी तुहां कुथों दे रहने वाले न कने तुहांदा नां की है जी।
1: मैं रहने वाला बैजनाथ दा रहने वाला कने छोटा दे गांव आंदा
0: जी बैज जी बैजनाथ दे रहने वाले न।
1: हाँ जी जी तुहां दा छोटा दे अरनोल जिथों दे रहने वाला मैं
0: जी। अच्छा अच्छा
1: हाँ तो मेरा नाम टिंकू कने मेरे चाचे दे नाम संजय
0: जी टिंकू।
1: हाँ तो ये चाचा भतीजा देखा दे तुंदे सुना दे नु
0: जी। अच्छा प्रोग्राम में
1: सुन रेडियो
0: जी ता रोज ही सुनदे तो हां इस प्रोग्राम में जो।
1: हां जी हां जी रोज ही सुनदे जी।
0: जी जी ता बैजनाथे दी नोई ताजी मौसम कदे है उस साइड।
1: मौसम तो मैडम जी इस टाइम बदल है
0: जी। अच्छा बदल ही है।
1: हां जी बदल ओखा तो
0: जी बदल ओखा तो पाए ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी ता रौनका लगियां शिव मंदिर।
1: हां जी हां जी
0: जी ता शिव मंदिर ते नजदीक ही हैं कि दूर हैं।
1: नेड़े ही हैं बस 2 किलोमीटर है।
0: जी जी चलो अच्छी गल है जी रौनका लगना जरूरी है ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी जी ता आज तुहां कुंदिया जिड़ा गीत है से सुनना पसंद करगे जी।
1: हां जी आहा ताड़ी 4 दिन पहले किते आ फोन ना।
0: जी जी
1: ता ताड़ी टाइम साइड हो गया 3 बजने वाले थे।
0: जी जी
1: ताहा सामो नार वाला गाना दसया हा।
0: जी अच्छा श्यामो नार वाला गाना सुनने।
1: हां जी सर थोड़ा देर सुनाया फिर थोड़ा टाइम हो गया होना 3 बजी है।
0: जी जी 3 बजे तक रहंदा ना जी ये लाइव कार्यक्रम ना जी।
1: ताहा यहां आज पहले करी थे मैंने आज पहले करिंदे पूरा सुन लेंगे।
0: जी अच्छा ताई आज तो हां सोचे कि पहले पहले ही कॉल कर लेंदे ना जी।
1: हां जी
0: जी तो तुहे जुड़ी करी कदिया लग्या जी।
1: हां वधिया लगे जी जुड़ी।
0: जी जी बाकी कार्यक्रम भी सुन दे तो हां।
1: हां जी सुन दे कार्यक्रम जी।
2: 4 बजे
1: तक जी पूर वाला भी सुन दे। हां 4 बजे जेड़ा हुंदा
0: जी 4 बजे जेड़ा हुंदा गदियाली से भी सुन दे तो हां।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी चलो अच्छी गल है जी सुनना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ मैं सुनता कम कर देना था बस रेडियो आता चली रहता। हाँ काम कर दे रहते कने रेडियो सुन दे रहते।
0: जी अच्छा काम भी कर दे कने रेडियो भी सुन दे।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो श्रोता वास्ते तो हाँ क्या जेड़ा संदेश है कि रेडियो सुनने दे क्या फायदे हैं तुहें क्या लगता तो हाँ भी सुन दे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी तो थोड़ा दिया जिड़ा अपने विचार हैं कि रेडियो हाँ सुन दे ना तो ते देख क्या क्या फायदे ना।
1: रेडियो सुनने दे फायदे ने कि सिंह अपना विचार है कोई सा दस
0: जी
1: सकते ता हम पब्लिक जेडी से सुनी सकदी
0: जी जी
1: दे सुनी कि तो जेडे बंदे दुगने सुना दे तो गाइड करन ता अच्छी गल है।
0: जी
1: अच्छी अच्छी गल्ला जेडा नॉलेज बढ़दा इस चीजें ते।
0: जी जी
1: हां जी हां
0: जी तां धन्यवाद जी तुहंदा जुड़ने वास्ते
1: जी
0: जी।
1: ठीक
0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो सारे भी जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकदे कन्ने हाँ कन्ने प्यारियां प्यारियां जेड़ा गल्ला बात है ना से जरूर इस कार्यक्रम च करी सकते क्योंकि अपनापन जेड़ा से होना जरूरी है। जिंदगी है ना जिंदगी हर दिन अह वास्ते खास है अजकल जेड़ा दिन है क्योंकि कुथी ना कुथी यहाँ दे जेड़ा शब्द है ना से यहाँ जो चाहे यहाँ अच्छा बोल देना चाहे यहाँ बुरा बोल देना से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ दे जेड़ा शब्द है से यहाँ किस तरीके ने रख देना कने अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ा देना कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चल देना।

0: ये तो है सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो है सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तो है सारे इस प्यारे दे भजन जो एंजॉय करा देने। इस भजन दी फरमाइश आहां जो आयु वे दाड़ी ते कन्ने तीना दा नाम वे मेघनाथ जी। तो जरूर मेघनाथ जी तक अहां ये गीत पहुँचाया कन्ने ये फरमाइश तीना तक पहुँचाई कन्ने तो हाँ सारियां भी इंजॉय की थी। तो सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। कन्ने समय दी ओर अगर नज़र दौड़ांदे न तो समय भी अपनी रफ्तार लेकर चलिया। 2:03 कार्यक्रम चोइयां न कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़े से जरूर करी सकते। तो शो तुम गलबात करने वास्ते जिहड़ा हंदा नंबर है से तुह तक पहुँचाइंदे न। नंबर है 7018117091। नंबर तुह तक पहुँचाई ते कन्ने दसो तुम एक छोटी दे कहानी है क्योंकि कहानियाँ जिहड़ा न से जरूर अहां जो कोई ना कोई जिहड़ा सीख है से देखरी जांदियां न। माइक दी जिहड़ा कहानी है वैसे तो हल भी एक प्यारा दिया माइक है। माइक के जरिए ही जिहड़ा आंदी आवाज़ है से तुह तक पुजा दी है। तो एक माइक था से हमेशा ये सोचता था कि मैं तो एक साधारण दी चीज़ है। ठीक है माइक जिहड़ा से हमेशा ये सोच विचार करता रहता था कि मैं तो साधारण दी चीज़ है मेरी जिहड़ा से क्या कीमत है। पर एक दिन जड़े से छोटा बच्चा स्टेज पर चढ़ता है कने माइक कने बोलना जड़े से शुरू करता है बोलता जानता है कने अपनी जड़ा आवाज़ है से माइक दे जरिए हजारों जितने भी हजारों लोग हैं तिना तक पहुँचा देता है। तो बच्चा जड़े से खुश हो जाता है कि मेरी जड़ा आवाज़ है से माइक ने हजारों जितने भी लोग हैं से जड़ा मुझे सुना दें तिना तक मेरी आवाज़ जड़े से पहुँचाई है। तो माइक जड़े से मुस्कुराई कर यहाँ जो यही समझाता है या यही सीख देता है कि खुद की कीमत अगर हाँ खुद समझते न क्योंकि अगर हाँ छोटा दिया काम भी करते ना तो से हाँ जो खुद पर विश्वास होना चाहिए या छोटी दे जड़ा मदद है से हाँ जो कुथी ना कुथी अहां दा जिहड़ा बड़ा बदलाव है तिसदी ओर लेकरी जांदी है। तो माइक अहां दी जिहड़ा आवाज़ है सभी हजारों जितने भी हजारों व्यक्ति हैं तिना तक पहुँचा दी कने से जरूर इस माइक दे जरिए या अहां दी जिहड़ा आवाज़ है से सुना दे कने इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी भी सकते कने अपने जिहड़ा विचार हैं सभी अहां तक पहुँचाई सकते कने बाकी श्रोता तक भी जरूर अपने जड़ा विचार हैं से रखी सकते। तो शो तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया क्योंकि श्रोता तो वैसे कॉल करा दे न कने जुड़ी होनी श्रोता तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते शशि जी, क्या हाल चाल है
0: जी? ठीक ठाक हैं जी, तो हाँ ठीक ठाक हैं ना?
1: ठीक ठाक जी, वधिया
0: जी। ਕੁਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ
1: ਜਿੰਨਾ ਖਨਿਆਰੇ ਦੇ ਹੈ ਬੋਲੇ ਰੀਨਾ
0: ਜੀ ਰੀਨਾ ਜੀ ਖਨਿਆਰੇ ਤੇ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੇ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਜੀ
0: ਜੀ ਤਾਂ ਰੀਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਯਾਦ
1: ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
0: ਜੀ
1: ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ
0: ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ
1: ਇਹ ਫਾਸੀ ਪੇ ਲਗਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਕੀ ਦੇ

0: जी माइक दे बारे च हाँ ये बोला दे थे कि माइक जेड़ा से कहानी है ना जी, माइक सोच रहा है कि मेरी जेड़ा कीमत है से बिल्कुल नहीं है ना जी, पर यही माइक आंधी आवाज भी तो तक पहुंचा था ना जी। जी तो सीख है ये कि हाँ जो खुद जो कभी भी कम जड़े से नहीं समझना चाहिए ना जी। जी तरीना जी क्या हाल चाल है खनियारे आले आंदे
1: करे बनी हाल चाल सब बस मौसम ठीक है आज भी पिछले काल में ठीक था
0: जी
1: बरसात थोड़ी है जो मिली रात है
0: जी जी और नोई ताजी
1: बस सब पुरानी है जी
0: जी सारियां पुरानियां ही हैं
1: कार वो कुआरी है क्या कितने नाल गया
0: जी ये गाना
1: कुकड़े
0: सुन है
1: आंजी आंजी
0: जी तो तोहा भी गांदे इस गाने जो थोड़ा देर गुनगुनांदे कि नहीं गुनगुनांदे
1: हां हां गुनगुनांदे कोई नहीं
0: तो मैं तो सुनना चाहंदी तो हुंदी आवाज से थोड़ा देर
1: हां सुनांदी ना
0: जरूर
1: पर वो

0: आज चलिया जाना मैं सवेरे चलिया जाना वो रोटियां वो परदेसिया वो रोटियां पकाया कल्ला तू पर वो कुमारिया वो कहने दिया डालिया वो पेड़ ने वो परदेसिया वो पेड़ ने धन्यवाद
1: जी, बड़ा ही प्यारा गीत तो हाँ सुनाया, बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा
0: जी, धन्यवाद
1: जरूर तो हाँ दी जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हाँ दा,
0: धन्यवाद जी बहुत बड़ा
1: जी, जी। दर्शो तो अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कने तो जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश की ओर।

0: तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे सुनिया ए प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश ए फरमाइश आह तक पहुंची हुए बैजनाथ ते कने तिना दा नावे टिंकू जी संजय जी तो जरूर तिना तक कहां ए गीत पहुंचाया कने तुहां सारे भी इंजॉय कीता कने अगले जेड़ा श्रोता ने सियां कने जुड़ चुके न करते तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी जी
0: जी
1: जी और कैसे हो
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो हम कुछ ते बोला दे कने तो हम दा ना किया जी।
1: मैं कांगड़े तो बोला ही राधा कश्यप
0: जी कांगड़े ते बोला दे।
1: हाँ जी
0: जी ता क्या हाल चाल हैं जी कांगड़े वाले अंदे?
1: ठीक ठाक।

0: जी। दादाजी कांगड़े दा मौसम क्या बोला था इस टाइम?
1: कांगड़े बस गर्मी है थोड़ी थोड़ी, धूप
0: जी गर्मी
1: बदल भी है, थोड़ी
0: जी। अच्छा ज्यादा है कि थोड़ी है?
1: थोड़ी बदल
0: जी माड़ा माड़ा ही है
1: बदल
0: जी। दादाजी आज तुह कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: माड़ा माड़ा भी। हाँ जी, आज असी बाबे गाना सुनाई दोड़ थले, पता नहीं भैन मेरी ही बोला दी कुड़
0: जी
1: भी
0: जी
1: ना।
0: जी कुंदिया
1: खेत बोर्ड दे खड़की
0: जी कुंडिया
1: खेत
0: गीत
1: बोर्ड। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक
0: जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी। तुहंदा ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है। तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाह करने जुड़ी सकते। गलबात अहां दी हमेशा रहंदी है, कने तुह सारे भी गलबात करने जरूर जड़े से जुड़ते हैं। तो शो तो रिश्तें दी गल करिए, या रिश्तें च जेड़ा प्यार भावना है या अपनापन है, से बिल्कुल कुथी ना कुथी यहाँ जो दिखने जो नहीं मिला दा। क्योंकि हर दिन अहाँ कोई ना कोई न्यूज़ बोली सकते, या कोई ना कोई सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ जेड़ा ऐसे दिखते रहते ना। पर कुथी ना कुथी अगर अहाँ ये विचार रखी कर चलते ना, सकारात्मक सोची करी चलते ना, तो से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ अपनी जेड़ा सोच है या अपनी सोच यहाँ जो किस प्रकार रखना चाहिए थी, सकारात्मक रखना चाहिए थी कि नकारात्मक रखना चाहिए थी, से यहाँ पर निर्भर करता। करें तो वहाँ भी ज़रूर अपने जेड़ा विचार हैं से यहाँ करने साझा कर सकते, यहाँ करने पहुँचा ही सकते। करें फेसबुक लाइव भी तो वहाँ जितने भी लिसनर हैं अभी दिखा दे उन्हें ना, तेरा जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते करने यहाँ फ्री ते आगे बढ़ते ना। करें तो वहाँ जो अगली फरमाइश थी वो लेकर चलते ना। अगली जेड़ा फरमाइश है थोड़ा दया मोबाइल फोन दी और नज़र अगर दौड़ाइए, तो ये फरमाइश अहाँ जो आई हुए नगरोटा वगमा ते कवाड़ी ते, तिना दा नाम है रिम्पी जी। तो ज़रूर तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देना। तो वहाँ जितने भी बाकी श्रोता है ना, तिना तक भी अहाँ फरमाइश पहुँचानी है। कने तो वहाँ अपना रेडियो भी सुना, कने अपने जेड़ा काम मन तिना जो भी करा।

बोला दिन रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कने तशो तो फिर ते थोड़ा दिया गया बर्थडे न समय दे अनुसार हाँ फिर ते अपने सफर जो आगे बढ़ा दे कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे क्योंकि समय जेड़ा है से थोड़ा दिया ही है कने श्रोता का जेड़ा इंतजार है से बड़ी देरी ते लग गया क्योंकि जिन्हें ही 2 बजते तिन्हें ही श्रोता जेड़े से कॉल या टेक्स्ट मैसेज करना जेड़े से शुरू हो जाते कने अहां दी जेड़ा कोशिश है सभी यही रहिंदी कि गलबात भी जरूर तुह तक पुजे कने जेड़ा तुह दियां फरमाइशां सभी तुह तक अहां पहुँचान। दशो तो गलबात अहां जेड़ा माइक दी छोटी दे जेड़ा कहानी है से तुह तक पहुँचाई थी तो माइक दी जेड़ा गल अहां कीती थी तो यही है कि अहां कोई भी काम करते न छोटी शुरुआत करते न ताई अहां जेड़ा बड़े बड़े सपने न तिना जो हासिल करी पांदे न सपने जो साकार करने वास्ते मेहनत जरूर लगती है। मेहनत करी करी ही अहां काम करते न मेहनत करना भी ज़रूरी है इसी करने ठीक है पढ़ाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी है ज़िंदगी च अहां वास्ते जितना खाना ज़रूरी है या पानी पीना ज़रूरी है जितना अहां वास्ते अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है उतना ही अहां वास्ते अपने माता पिता का मान सम्मान करना भी ज़रूरी है क्योंकि अहां दे जेड़ा माता पिता ना से हमेशा अहां वास्ते अच्छा ही सोच दे अच्छी सोच जेड़ा से रख दे न क्योंकि ठीक है कि नकारात्मक विचार भी हैं सकारात्मक भी विचार हैं पर से अहां पर निर्भर करता कि अहां किस तरीके ने अपने माता पिता दा मान सम्मान करा देन से अहां पर ही निर्भर करता है। तो ज़रूर इसी गल बात करने अहां अपने सफ़र जो अगे बढ़ा देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत इस गीत की फरमाइश शाह तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है प्रिय गौतम जी कने से रहने वाले ने धर्मशाला ते तो जरूर तिना तक हाँ ये गीत फरमाइश पहुंचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। इसी फरमाइश के बाद हाँ फिर ते अपनी जरा गलबात है तिहा पर वापिस आई आते हैं कुछ एक जानकारियाँ जरा सभी तुह तक पहुँचाना जरूरी है न। शिक्षा विभाग ने जड़ा सख्त हाँ ये बोली सकते कि स्कूला च जड़ा उबलिया पानी कने फिल्टर पानी जड़ा से बच्चों जो पिलाने दे जड़ा आदेश हैं से जरूर जारी किए हैं क्योंकि कुल्लू दी यहाँ गल करिए तो कुल्लू स्कूल च जड़ा खीर खाने के बाद जितने भी विद्यार्थी जड़े से बीमार होइए थे तो जड़ा उबलिया पानी कने जड़ा फिल्टर पानी है से बच्चों जो पिलाना है। तो शुरू तो बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम च अह जो ज़्यादा नहीं ज़्यादा अगर अह उबलिया पानी पीते हैं तो अह की जड़ा सेहत है से ठीक रहती है क्योंकि बरसात के मौसम च पानी भी खराब होता तो से कुथी ना कुथी अह की सेहत जो भी बिगाड़ी है तो ज़रूर तुह अपनी सेहत नहीं बिगाड़नी है अपनी सेहत का जड़ा ख्याल है से रखना है। सेहत का ख्याल ताई रखी सकते जलो हाँ प्रॉपर तरीके ने जड़ा पानी है या खान पान है से सही रख देना क्योंकि खान पान अगर अहाँ का कुथी ना कुथी बिगड़ी आता है तो अह की जड़ा सेहत है सभी अह जो दस्तक देना जड़ा है से शुरू करी दी है तो कोई भी ये नहीं चाहता कि अह की जड़ा सेहत है से अह जो दस्तक दे। तो इसी जानकारी के बाद अहाँ थोड़ा जहा फिर अगर बढ़ते हैं कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न चला फिरी ते थोड़ा जहा घूमी फिरी आते खनियारे क्योंकि एक फरमाइश अह जो खनियारे ते आई हुए

તો શ્રોતાઓ ફરી ત્યાં વાપિસ તો હતક પૂછી જોને આપની ગલબાત લઈ કરી કને તો સારે એ ગીત એન્જોય કીતા ઇસ ગીતી ફરમાઈશ અહાં જો આયુ વેરીના જીદી કને સરેણે આળે ન ખને આરા તે તેના આપની આવાજ છે ભી એ ગીત જેડે સે ગુનગુનાયા થા તેના થા ફરી તે મેં એક વરી ધન્યવાદ કરના ચાહતી ક્યુંકિ કુથી ન કુથી એ ગીત સંગીત જેડા ન સે અહાં જો હંમેશા એકી દુબેને જેડે સે જોડી કે રખદે ન दर्शो तो जीवन दी जड़ा सीख है सहाँ जो हर दिन कोई ना कोई जड़ा सीख है से देख रही जानती है बंद कमरा दर्शो तो बंद कमरा क्या वे थोड़ा दिया सोच विचार करके दिखा कि बंद कमरा क्या वे एक जड़ा बुजुर्ग है बुजुर्ग दी यहाँ गाल करिए से पिता जड़ा है से रोज़ अपने जड़ा बेटा है उस जो कमरे जो जानता था कने आवाज़ जड़ा से दिंदा था पर से बेटा जड़े से हमेशा क्या बोलता था कि मैं बिजी है आज कने दौर की गल करिए तो अहाँ आजकल क्या बोला दे अहाँ जड़ा न से बिजी हैं चाहे मोबाइल फोन ची बिजी हैं पर अहाँ हमेशा अपने माता पिता जो या बुजुर्ग अंतिना जो यही बोलते हैं ना कि अहाँ बिजी हैं एक दिन जड़े से पिता जड़े से दरवाज़ा खटखटाना जड़े से बंद करीन दे क्योंकि उस दिन जड़े से कमरा जड़े से हमेशा ताई जड़े से बंद हो जाते हैं क्योंकि जीवन की यही सीख है कि जड़ा दरवाजे से अहाँ जो दस्तक बोली सकते या इंतज़ार जड़े से अहाँ जो कराते हैं पर सही बंद कमरा जड़े से या जड़ा इंसान यह दुनिया से चले आता है फिर है दरवाज़ा उन्हें ही जड़े से बंद हो जाते हैं या खटखटाना जड़े से उन्हें ही बंद हो जाते हैं तो अपने दी जड़ा कदर है से ज़रूर करा अपने जो समय जड़ा है से ज़रूर दिया क्योंकि आज कने दौर दी यहाँ गल करते न चाहे से यहाँ आपस च बैठे न फिर भी यहाँ अपने माता पिता कन्ने गल बात नहीं करा दे या फैमिली कन्ने गल बात जड़ा से यहाँ नहीं करा दे या हम ये बोली करी गल जो टाली देन कि यहाँ समय नहीं है समय चाहे से हम मोबाइल फोन च लगा देन या पढ़ाई का जड़ा बहाना देख रही अहाँ मोबाइल फोन जड़े से दिखते न तो कुथी ना कुथी अहाँ समय जो बोली सकते या अहाँ अपने जो समय नहीं देंदे न समय तो अहाँ है पर अहाँ खुद जो यही हमेशा दस दे न कि यहाँ समय नहीं है पर समय तो अहाँ है पर अहाँ कितनी के समय की कदर करते न या अपने जो समय जड़े से देंदे न चला अहाँ भी कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं ना क्योंकि समय हल भी थोड़ा दे है।

श्रोताओं, इसी भजन करने तो सारे अपनी रेडियो तो शशि जदिया अनुमति, क्योंकि कार्यक्रम का जोड़ा समय है सेहत ही संपन्न होता है। इसी करने तो अपना जोड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला से गुनगुनाते रहा।

0: गोरिया गोरिया आकर गोरिया गोरिया गोरिया आकर आ गोरिया
1: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
2: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
3: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
4: ओए बिट्टो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
3: लेकिन भाई साहब आप कौन है?
4: जी मैं इसका बाप हूँ।
3: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
5: जी नहीं।
3: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
6: चालान तो कटेगा भैया तेरे।
3: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
5: रोड किसी के बाप का नहीं है।
3: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया।
6: मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: गोरिया
1: गोरिया आकर गोरिया
0: गोरिया
1: गोरिया आकर आ
0: गोरिया
2: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: चलान तो कटेगा भैया तेरा,
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो मंचन धर्मशाला की ओर से आ रहे।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है।

0: निकलवाओ तो जरा।
1: मास्टर जी टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे ना किसी को सीने देंगे।
2: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
3: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
4: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया, और जैसे ही लेफ्ट लिया सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
3: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
4: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुचुगा कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे तो है सब, उम्मीद करनू है तो सब घरे बुने हंसते खेलते बुने और अपने घर खुश बुने तंदुरुस्त बुने हिन और खुश रहना तंदुरुस्त रहना अक्सर बोलना श्रोतों की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हा। बाकी दे कम बाद च पहला से जरूरी है, यह ना पंजाबी में गुरदास मान जी की या सो अक्सर अपने लाइव शोज में एक गल जरूर बोलते हैं। ताऊ भी एक गल की सो तिया तो सीखो और जरूर बोलता श्रोतों कि बाकी री गल क्या ना सो बाद में पहला पहले किया सो सेध जरूरी है। सेध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुंदा शरीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शोतों खरे रह ले ताई ता खरा कमल ले और दुनियादारी हेर ले, है ना। फिलहाल आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहा शोतों इस गीता सो के और फिर आगाज तो बाद शोतों अन्य जानकारी के अंश तो सो गया है जरूर साझा कर ले शेयर कर ले।

0: चलिए शो तो आगाज़ हो चुका कार्यक्रम रा हिंदी अपनी गप्पा रा और आगाज़ बुआ गद्दी चलो परदेस हाँ कमाने वास्ते तू पता गाना तो बंदा है शो तो है ना और तो सब श्रोता सोगी जुड़ी सकते हैं कॉल कर सकते हैं 708-8-7-09 पर नंबर अक मुके फिर आऊँ शेयर करनू साझा करनू तू सोगी 708-8-7-09 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं और हुनाई भेज सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी जानकारी इन श्रोताओं जो आसू तुसोगी साझा करनी हिन शेयर करनी हिन इन दे श्रोतागण के अनुसोगी कनेक्ट लगे पे हिन भूना उस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू करते हैं श्रोताओं। हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: करण मल्लूदा
0: अच्छा करण जी कड़ियों बल्लों दे ने बगैड़े थो ठीक ठाक ने करण जी
1: हाँ जी ठीक आ
0: और करे लगुरिन
1: करा मना पर दिखो लिए थे
0: अच्छा बर्दी खोल लिए थे
1: हाँ जी
0: बर्दी खोल लिए थे
1: खाना
0: खाओ अच्छा चलिए चलिए जान लेंगे कि आम बच्चे रा जीवन रा जो टाइम बुंदा टाइम पीरियड बुंदा हा सो कदे कदे रहिंदा है करण करण तो है अपना नाम दसो है ना जी
1: हाँ जी
0: करण जी ये दसा कि तो है जी स्कूलों आए तो है बर्दी खोले खाना खाओ और बैठन इतों बाद तुंदा क्या शेड्यूल रहिंदा क्या बात है बहुत बढ़िया करण जी कौन देने गीत थोड़ा पसंद कर ले
1: अजय भरमौरी का गीत नागरा कोल कुंडिया
0: अजय भरमौरी का कौन गीत जी
1: नागा खोल कुंडिया जी
0: ठीक है जी जरूर होने ले तो सुए गीत
1: ठीक
0: है धन्यवाद
1: ठीक है जी
0: चलिए श्रोतों कार्यक्रम मंच है हगुन जरूर बढ़ दिन बहुत सारी जानकारी जो तुसोगी शेयर करनी ने साझा करनी बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी खबरें आज तक तो सब श्रोतासोगी जुड़े जरूर सकते हैं श्रोतों कॉल कर सकते हैं 708-8-7-09 पर तो चलिए कुछ एक जानकारी लेकर आए हाजिर बुंदन तीन तक एक फरमाइश की सो भी पूरी कर लेंदे हैं श्रोतों नागा खोल कुंडिया अजय भरमौरी द्वारा एक पूरा गीत है श्रोतों एंजॉय कर दें रेडी गुंजन धर्मशाला मंच

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर क्या ट्यून कर रहे हो तो ऐसा भी है दसा बिल्कुल दसा जी, जितने भी श्रोता हूँ कर देने सो जरूर अस होगी जुड़ी सकते हैं और अपना

0: लंदन। नमस्ते जी, हेलो।
1: जी
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अच्छा
1: जी,
0: जी, ठीक ठाक। राजी बाजी
1: जी अच्छा
0: हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया है भी, ठीक ठाक ने।
1: जी
0: हाँ जी जी, कुंदने गीत उड़ना तो सु।
1: अच्छा माता
0: अच्छा, टल माता।
1: जी
0: टल माता जो कमल नैरिये गौरा, है ना जी। ठीक है जी, जरूर होना ले तो सुए गीत है। धन्यवाद। श्रोताओं ता फेसबुक रे जरिए के न सो लाइव इने री कोशिश करो कर दे थी है। लेकिन हाँ चले आए न भाई। है बड़ी देर हम कोशिश करो कर दे थी कि है लाइव सेलिन श्रोतों फेसबुक रे माध्यम तो भी कजू की इंदा कॉन्सेप्ट ए भी रहता कि है फेसबुक रे माध्यम तो लाइव इन तो सभी ट्यून कर रहा। इस समय 91.2 MHz पर रेडियो गुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के न सो हूणु कर देना। आर जे सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव अपने वीडियो सेट पर रेडियो गुंचन धर्मशाला मंजे। आइए शो तो कार्यक्रम जो आगे बढ़ देना और कुछ एक खास जानकारी तुसो की शेयर कर लें देना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ए बल्लू अशोतों की हिमाचली अधिकार री लड़ाई वास्ते के न सो विधानसभा वे मानसून सत्र रे बाद तिया दिल्ली गाना हा। राज्य थो जुड़े विषय जो केंद्र जो विषय हिन जो कॉन्सेप्ट हिन राज्य थो जुड़ रहे तिन्यों केंद्र सरकार सो कि सो मजबूत केंद्र सरकार रे सामने किए सो मजबूती सो कि सो विषय के न सो चुकने हिन सामने रखने हिन। BBMB और किशाओ वाद थो जुड़ रहे मामले व उल्लेख कर दे तिया बल्लो हा कि फैसला हिमाचल प्रदेश रे पक्ष में हीणा के सो बड़ा आर्थिक लाभ भूना हा। अगर फैसला हिमाचल प्रदेश रे पक्ष में इंदा हा। राज्य जो अपना अधिकार मिलने थो हर वर्ष करीब 1500 करोड़ रुपये भी अतिरिक्त आय भुने हा। हिमाचली अधिकारों री लड़ाई लड़ने वे वास्ते की सो सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता री टीम के अशोतों सो तैयार भी करे हा। इसी सो की अगली जानकारी भी आके सो तुसो गया शेयर करते हैं। कुल्लू जिला रे प्राथमिक स्कूल बाड़ी में खीरा खीर खाने रे बाद किए सो छात्र बीमार बची गो हा। सो तो बीमार पड़ने री घटना तो बाद किया सो शिक्षा विभाग है किया डिपार्टमेंट शिक्षा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट किया सो तो सो प्रदेश रे सब भी सरकारी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था जो लेकर सख्त निर्देश के न सो जारी करे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय के ऐसो सभी उप निदेशक प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों जो मानसून रे दौरान जल जनित बीमारी रोकथाम रे वास्ते तत्काल प्रभाव थो किया सो विशेष एहतियात कदम चुकने बल्लो हाशतों निदेशक स्कूल शिक्षा के ऐसो सभी प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों जो निर्देश देते हैं कि स्कूल में केवल सुरक्षित फिल्टर या उबला पानी ही किया सो विद्यार्थी जो उपलब्ध भोआ तो जानकारी रे पिटा रहे चले रहने तो सब बन रहे इस समय। आज सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर दें छोतों। आइया आले कर चल दें तू सभी जो और अगले फरमाइश किया सो पूरी कर दें छोतों।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रो और कार्यक्रम में दी अपने गप अगेन सो हूँ करते हैं आज सचिन कपूर सो की बिल्कुल लाइव अपने वीडियो सेट में था श्रोतो बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी किया सो है तुसु तक लगे हिन पहुँचाना और आसपास अगर तुंदे बच्चे हिन या बच्चे री मुआ हिन या बच्चे री दादी हिन या बच्चे रे चाचा चाची ताऊ जो भी परिवार है मंच सदस्य रंद है सोहिन तसो जरूर करी करी किया सो यह जानकारी जो खास ध्यान दीन शोतो बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी की है सो है तुसो की लगे शेयर करना शोतो जिला मुख्यालय धर्मशाला वे सोगी लगदे खनियारा रक्कड़ क्षेत्र में किया सो मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग जो लेकर की अक दर्दनाक घटना की ऐसो समस्त क्षेत्र जो किया झकझोर करी रखी दिता है श्रोतों मोबाइल पर गेम खेलने वास्ते फ़ोन ना मुड़ो और फोन ना मिलने पर किया सो नाराज 14 वर्ष किशोर है कि ऐसो कथित तौर पर आत्मघाती कदम चुके लिए श्रोतों जो क्या है बखूबी जान दहिन दूसरों दसना चंदा श्रोतों मृतक की पहचान प्रिंस पुत्र रवि कुमार रे रूप में भोई हा घटना रे बाद परिवार सदमे में हा श्रोतों तटीय इस घटना की सो बच्चे और किशोरा मंच बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग भी निर्भरता जो लेकर की ऐसो चिंता बढ़ाई है श्रोतों हाल ही में जोनल अस्पताल धर्मशाला री ओपीडी में प्रतिदिन मोबाइल फोन री बीमारी थों ग्रसित अक दर्जन थों करीब किशोर बच्चे के न और बड़े बच्चे भी और मोटे भी के न सो पुजू कर देन जतिमा के सो आधा दर्जन करीब अति गंभीर रोगी के न सो पाए गए छू कर देन जियारा ब्रेन पूरी तरीके होगी मोबाइल फोन रा एडिक्ट किया सो बुझी छू रहा तो सोचा दर्जन रहा हिसाब है क्या सो मोबाइल इस्तेमाल करने वाला जाए सो मोटे भून स्क्रीन टाइम जाए सो हल्के भून सो तो दर्जनों केस की है सो जोनल अस्पताल कांगड़ा में पाए गए छू करते हैं मृतक किशोर है पिता रवि कुमार है किया श्रोताओं सो दसो के प्रिंस अपनी माँ थो मोबाइल फ़ोन मंगू करदा तो ताकि सो गेम खेली सका मोए किया तो तस ये फ़ोन ना दिता तो सो नाराज़ बुझी करी किया सो अपने कमरे में चली गो कुछ समय बाद श्रोताओं तसी सेरी बहन ये किया सो घरे पुजी सेरी बहन की सो घरे पुजी और रसोई री और गई तिनिया हेरो की कमरे में अचेत अवस्था में किया सो भाई पियू रहा परिजन जो घरवाले थी है सो तस्यू तत्काल अस्पताल लेकर ही पुजे जड़ी डॉक्टर है तस्यू मृत घोषित किया सो करी दिता बेटे री मौतों गमगीन रवि कुमार है कि ऐसो अन्य जो पेरेंट तिन्या थो आकर भावुक अपील किए सो करे है अबे भावुक अपील क्या करी है सब पेरेंट जरूर होने लैन और बलदा पेरेंट भी हूँ बच्चे री दादी भी हूँ बच्चे री मुआ भी हूँ पिता भी हूँ और बुआ भी हूँ जितने भी घर रे सदस्य हैं सो जरूर थोड़ा करी रेडियो सेट अगर लोरत आवाज़ जोरे कर दिया और फेसबुक रे माध्यम तो यह जानकारी होनू कर दिन यह जानकारी जो जरूर पहुँचा हर बच्चे तक हर माता पिता तक हर पेरेंट तक रे है जानकारी की ऐसा जरूर पहुँचा सो तो अक पिता रे क्या भावुक अपील है तिन्या बल्लो कि त्यारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं आ लेकिन सोना चांद है कि किसी अन्य परिवार रे ऐसी पीड़ किया सो तिन्यों भी जरना पिया ऐसी पीड़ तिन्यों भी पिया और ऐसी पीड़ तो तिन्यों भी किया सो गुजरना पिया तिन्या जितने भी पेरेंट हैं तिन्या थों गुजारिश करे कि बच्चे जो मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग रे बढ़ते इस्तेमाल पर नज़र रखने तथा त्यारे खेल कूद और रचनात्मक गतिविधि थों जोड़ने रा आग्रह किया सो करो तिन्या स्कूल थों तिन्या दसो कि स्कूल थों जहने भी बच्चे इंदा था बच्चे जो किया सो मोबाइल अक्त दस्ता मत
मतलब मोबाइल हा के बच्चे जो घर मंच पता ही ना बुने चिंदा कि इस मोबाइल तो क्या सो क्या क्या निकलता क्या क्या चलता और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ इस मोबाइल मंच बुंदी हिन ये बच्चे जो पता ही ना बुने चिंदा हाशो तो तिया स्कूल तो भी किया सो अपील करे कि पढ़ाई और गृह कार्य वे नाम पर बच्चे जो लगातार मोबाइल पर निर्भर किया सो ना बनान बच्चे वे सो के संवाद खेल कूद और मतलब इस तरीके री चीज़ कैन सो बढ़ान है ना जी इस तरीके री चीज़ कैन सो बढ़ान जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और ये 14 वर्ष बच्चा त्यारा बच्चा ना मरुआ ये पूरे इन धर्मशाला क्षेत्र में के सो अक शोकरी लहर ज़रूर है सभी वास्ते और एक अके के अक भावुक पिता किया सो आग्रह करो सभी तो गुजारिश करे आ कि अपने बच्चे जो मोबाइल फ़ोन ना दसन और मुझे लगता कि जने हल्के तो वह है जो मुआ खास करके ली रेंदीन क्वार्टर मंज रेंदी या घरे भी कई मुआ कह सो केली बुंदीन है ना तो सो अपने कम करने वास्ते कि सो बच्चे जो मोबाइल की सो दी दिन दिन जो कि बिल्कुल गलत था तो है बच्चे होगी एक्टिविटी की सो करा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था बच्चे होगी खेला कूदा अन्य बच्चे होगी तस्वीर वखा मोबाइल नॉट अ सल्यूशन मोबाइल देना कोई सल्यूशन नहीं आरे लिया कि अक 14 साल रहा बच्चा क्या क्या माँ बुढ़े किया सो किए किए पालू बुना किए क्या सौंका चार पुत्र किया सो पालू बुना सो तो और तथों बाद सिर्फ मोबाइल ना देने पर एक कदम चलो है मन नहीं सकते कि सो बच्चा हल्का तो उसे भी सोच पुणे डिवेलप ना थी तसी उतने मोबाइल फोन इसे भी जिंदगी रहा अहम हिस्सा तो लेकिन यह तो मुट्टे ने असू तो दुनियादारी री समझ आ है तो जाने सकते हैं पहचानी सकते हैं असू तो पता क्या है मोबाइल दिच्छू कर देन बच्चे तो इतों से साइड इफेक्ट क्या क्या है ना जाए मोबाइल स्क्रीन टाइम तो है जाए 20 मिनट दिया जाए 10 मिनट दिया स्क्रीन टाइम री आदत कसकी बच्चे लगे गंदे सो तो सो फिर लगे ही गंदे फिर इस अवस्था में तो है कुछ ना कर सकता सो जितना बुझ सकता है उतना फोन ना दीन अपने बच्चे जो इतनी माँ के असो खास ख्याल रखना यह गल्ला मंच खास ख्याल जरूर रखना शोतों अगर अपने बच्चे जो मोबाइल फोन है दिंदे हिन शोतों तो ये असू वास्ते और इनके परिवार वास्ते किया सो बहुत ही खतरनाक अक एपिसोड के असो साबित हो सकता है शोतों सो जितना हो सके उतना दूर रहन शोतों वरना ये अवस्था ये सिचुएशन कस सिरे भी घर है कि असो पूछ सकते हा सो बी केयरफुल बरहाल कार्यक्रम तो है हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देना आर जे सचिन कपूर सो गए और आइए जी कार्यक्रम जो आगो बढ़ाते हैं और अगली कुछ खास जानकारी दूसरों की साझा करते हैं बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गए और रेडियो गुंजन री इसी ही गूंज सो गए आइए इंजॉय कर दें ये प्यारा दे भजन तुम्हें रेडियो सेट में

0: শত এফএম ব্যান্ড কি আনু দিশাম লাভ দুই মেগা হার্টস পর রেডি গঞ্জ ধারমশালা তো এসা বি টিউন করো আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা গেনে সো আজ চল রিন তো সবির রেডিও সেট মা বহুত বহুত স্বাগত হ্যাঁ পুনা সবির আইয়ে জি তো সব শ্রোতা জুড়ে সকতে হিনে 7018879 পর নম্বর এক মোকে ফিরে আউ শেয়ার করনো হ্যাঁ 7018879 পর তো সব শ্রোতা কল কর সকতে বরহাল இந்த ஸ்ரோதகன் அகில அசோகே கனெக்டடு நமஸ்தே ஜி.
1: ஹலோ
0: ஹலோ நமஸ்தே ஜி.
1: நமஸ்தே
0: நமஸ்தே ஜி நமஸ்தே. குன் பல்லுந்தேன் ஒரு கடி தான் பல்லுந்தேன்
1: அவன் சப்னா பகையாடு பல்லுந்தியா.
0: அச்சா சப்னா ஜி கஸ் குள்ள படுதேன் குண்டினி கிளாஸ் மா படுதேன்
1: தீசரி.
0: अच्छा तो कस स्कूल ले पढ़ दिन बगियाड़ा बगियाड़ा मन जो स्कूल ले तट्टी पढ़ दिन
1: हाँ जी मुक्कनी.
0: अच्छा सपना जी कौन दिन की थोड़ना तुसु
1: वो आज बोल.
0: हाँ जी
1: आज भर मोरी.
0: आज भर मोरी रे कौन दिन
1: धारा.
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होना.

0: लेना जी।
1: हाँ जी
0: और ठीक ठाक निकलो आज का दिन धुंधा।
1: ठीक है ना।
0: अच्छा ठीक है जी, जरूर एक गीत होना ले तुसु।
1: धारा धूरो मेरे नागा। हाँ
0: जी जी जरूर जरूर।
1: जी
0: ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्ते। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेवेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो उस सेट में। और बड़ी प्यारी दे बच्ची असू हो गए कनेक्ट हुए थे श्रोतो और धारा धूरो मेर नागा गीत के सो बच्चे होना चाहते जरूर होना ले, लेकिन सोगी सोगी तुसु पता श्रोतों की कार्यक्रम मंच जानकारी के सो भी इम्पोर्टेंट था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द कार्यक्रम रहे श्रोतों अपने गद्याली बोली मंच अपने गद्याली डायलैक्ट मंच किया सो जानकारी इन दे मनु तक पुजा है ना। हिमाचल प्रदेश सरकार है किया सो सरकारी कर्मचारी रे ड्रेस कोड और सोशल मीडिया रे इस्तेमाल जो लेकर किया सो सख्त निर्देश जारी करे हैं। शतों कार्मिक विभाग भी औरतों किया अक बार फिरी थों किया सो कर्मचारी जो ड्रेस कोड जो लेकर रिमाइंडर जारी करो हर्षतों। सरकार है सभी कर्मचारी जो सख्ती थो आदेश का पालन करने जो बल्लोहा तटीय नियम री अवहेलना करने वाले कर्मचारी पर अब उचित कार्रवाई भी भोने हाशोतों। सभी सरकारी विभाग जो जारी पत्र कर्मचारी जो कार्यालय में मर्यादित औपचारिक और शलीन पहनावा अपनाने वे निर्देश कहने सुदित हैं श्रोतों। सोगी ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियां योजना और संवेदनशील मामले पर अनि मतलब बड़ी ही अनिधिकृत टिप्पणी करने थो बिकी सो बचने जो बल्लोहा है न जी। सरकार स्पष्ट करो हा कि कार्यालय और अदालत में पेशी वे दौरान कर्मचारी साफ सुथरे सभ्य और औपचारिक कपड़े पहना। पुरुष कर्मचारी जो शर्ट पैंट अथवा ट्राउजर कॉलर वाली शॉर्ट ड्रेस होगी पैंट तथा जूते या सैंडल पहनने की सलाह देते हैं श्रोतों। महिला कर्मचारी वास्ते किया सो साड़ी औपचारिक सूट सलवार कमीज कुर्ता दुपट्टा और ट्राउजर पैंट ड्रेस होगी शर्ट जैसी परिधानों व उल्लेख्य बल्लो हा श्रोतों। कार्यालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने में स्पष्ट रूप तो मनाए आशतों मना करी देता है। कर्मचारी जो ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी किया सो ध्यान देने जो किया सो बल्लो आशतों। ये जानकारी है, जानकारी रहा पिटारा तू सब भी यहीं किया सो हुंदे रहना आज सचिन का पूर्स होगी। और कार्यक्रम 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच किया सो इस समय चल रहा है शो तो बखूबी इंदे श्रोतागण के अंसो असू की जुड़ कर दे तो है भी जुड़ी सकते हैं ना 7081889 पर। और रोजाना एक कार्यक्रम चूरता हूँ पंच चलता कार्यक्रम रना हिंदी अपनी गप्पा इना चीज सचिन कपूर इस कार्यक्रम जो होस्ट करता है श्रोतों। आइया थोड़ा करे हगों बढ़ लेंदे न और धारा धूरो मेरे ना का गीत इंजा हुनना था हुनंदे इंजा हुए गीत श्रोतों बने रहा और जो सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रही और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे इंदे श्रोता सो की बन रहे हैं।

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन दारम शाला तो ऐसा बी ट्यून कर रो और कार्यक्रम में दी अपनी गप अगेन सो चल रही नींद अकोर श्रोता सो के कनेक्ट हुए श्रोताओं पुस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते सचिन जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना
1: जी और कौन सुना ठीक
0: ना हाँ जी बढ़िया आशीर्वाद है तुंदा प्यार है तुंदा है बिल्कुल ठीक ने जी और कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: दाढ़ी से बोल रहा मैं नाथ
0: हाँ जी
1: दाढ़ी से मेघनाथ से बोल रहा
0: अच्छा अच्छा मेघनाथ जी पहले तो फरमाइश दस दिया कजो कि समय रहा भाव है थोड़ा करी हेलो
1: हेलो जेड़ा नवा गाना अमन कौर दा
0: नवा गाना अमन कौर रा
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक ठीक है मेघनाथ जी धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी तो जो तो ये कार्यक्रम जो होगा बढ़ते नहीं अगले श्रोता भी कॉल करू कर दें लेकिन माफ़ी चाहूँ का जो कि समय बची को हर श्रोतों लास्ट जानकारी दू कि मैं आकर दगन देहिन धर्मशाला मैकलोडगंज को जोड़ने वाले दोनों प्रमुख सड़क मार्ग के सो लगातार बरखा रहे चल दे के नसो अबे पूरी तरीके की ध्वस्त भूने री कागार मपुजिक छू रहे हैं श्रोतों अकोर कोतवाली बाजार थो खड़ा डंडा मार्ग पर जोगीवाड़ा रे पास सड़क फिरी के असो धस गए या श्रोतों जो कि अबे के असो कभी भी वाहन वास्ते के असो बंद बुझ सकते हैं तटीय दूजी ओर धर्मशाला मैकलोडगंज मुख्य मार्ग वास्ते राजमार्ग 583 भी कैंट नाला वे दूजे मोड़ रहे सोगी के असो बुरी तरीके की क्षतिग्रस्त के असो बुझे को हर्ष होता दोनों मार्ग की बिगड़ती हालत तो स्थानीय मनु है कि सो स्थानीय मनु सोगी सोगी पर्यटक भी जो पर्यटक इन तैयारी भी आवाजाही जो कि सो मुश्किल माँ की असो पाई सकते हैं इन मैकलोडगंज खड़ा डंडा मार्ग जोगीवाड़ा माँ सड़क धसने तो धसने वे बाद मार्ग पर वाहन री आवाजाही प्रभावित आशो तो क्षतिग्रस्त हिस्से थो वाहन बेहद सावधानी थो मुश्किल थो कि असो गुजरू करते हैं दोनों ओर लंबा जाम लगू करता है धर्मशाला थो मैकलोडगंज गाने वाले वास्ते राजमार्ग 583 री हालत भी गंभीर किया सुबह चिगजू रही आशो तो बहरहाल आऊँ सचिन कपूर अब तुस तो ले लेनो हाँ इजाज़त शोतों का जो कि समय बचगो तुस सभी जो टाटा बाय बाय बलने रहा और गंदे गंदे बस सही बलना चाहनो शोतों पेरेंट रा ख्याल ज़रूर रखा माता पिता रा ख्याल किया सो ज़रूर रखा सियाने भी इज्जत किया सो ज़रूर करा मुट्टे भी इज्जत किया सो ज़रूर करा शोतों अक्सर मेरी मम्मी बलदे हिन मुंजो कि सियाने और बच्चे घर जो मुट्टा और जो हल्के तैयारी जरूर होने तैयारी कोई अड़ी बहुत सो जरूर पूरी करनी है ना ता जरूर अगर तुंदे घरे भी कोई सियाने हिन कोई बच्चे हिन तो तैयारी अड़ी या फिर जो सो बन देन तैयारा दिल रखने ताएं किया सो जरूर करी छुकर ऐशो तो है ना बेशक बाद सो कम ना बुआ था ना करा लेकिन तैयारा दिल रखने ताएं किया सो जरूर कर ऐशो तो कजो कि ये जन्म असु कैली मुड़ रहा ये मनु असु कैली मुड़ रहे हिंशो तो नफरत रे अपने दिला मंच कोई जगह मत रखा सिर्फ सिर्फ पूजा पाठ कर ऐशो तो मनुरा भला करा रिश्ते अच्छी तरीके की निभा और इस जीवन जो बेहतरीन बना इन शब्द था हूँ सचिन कपूर ले लेनो तुस थो अब इजाज़त और फिर मुन्नो चाहिए था आज और फिलहाल ले लेनो जी इजाज़त नमस्ते धर्मशाला गंदे गंदे अमन कौर री आवाज़ में ये गीत के सो तुसू होना है गंदे ने।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। मानसून सत्र के बाद हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए दिल्ली जाएंगे सुक्खू। शिक्षा विभाग सख्तर, स्कूलों में उबला या फिल्टर पानी बच्चों को पिलाने के आदेश। वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप में बदलाव, एक से ज्यादा छात्रवृत्ति ले सकेंगे छात्र। प्रदेश में 22,600 करोड़ की ग्रीन वेल्थ का दोहन होगा। ऑफिस में जींस टी शर्ट पहनने पर सख्ती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए वह विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे। राज्य से जुड़े विषयों को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया जाएगा। बीबीएमबी और किशाऊ बांध से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। राज्य को अपना अधिकार मिलने से हर वर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हिमाचली अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम तैयार की है। कुल्लू जिले के प्राथमिक स्कूल बाड़ी में खीर खाने के बाद छात्रों के बीमार पड़ने की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को मानसून के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष एहतियाती कदम उठाने को कहा है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में केवल सुरक्षित फिल्टर या उबला हुआ पानी ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी पर शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से छात्रवृत्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मेधावी विद्यार्थी केवल एक छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं रहेंगे। वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप व्यवस्था में बदलाव करते हुए पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के तहत मिलने वाली एक से अधिक छात्रवृत्तियों का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और विश्वविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन विद्यार्थियों को होगा जो मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति हासिल करने के साथ साथ एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग की कल्याणकारी छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र थे, लेकिन इन छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं ले पाते थे। बाल विकास समिति जिला कांगड़ा ने धर्मशाला के रक्कड़ क्षेत्र में मोबाइल फोन की कथित लत के चलते किशोर की मौत के मामले में गहरी चिंता जाहिर की है और इस मामले में पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। समिति ने बुधवार को धर्मशाला थाना क्षेत्र के तहत रक्कड़ क्षेत्र के एक 14 वर्षीय किशोर द्वारा कथित तौर पर गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन न दिए जाने के चलते घर के कमरे में ही फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। यह जानकारी जिला कांगड़ा बाल विकास समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर उनकी अध्यक्षता में बाल विकास समिति ने इस मामले पर चर्चा की और इसकी स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगी। हिमाचल प्रदेश के जंगल अब केवल हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं रहेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का बड़ा जरिया बनेंगे। प्रदेश की वन एवं चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था में मौजूद करीब 22,600 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने के लिए वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डीआईपीपी के बीच 5 वर्ष का समझौता हुआ है।
वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के तहत वन संसाधनों की पहचान से लेकर बाजार से जोड़ने तक की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी विज्ञान, स्थानीय समुदायों व सरकार को मंच पर लाकर हिमाचल

0: जल के वन प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला सकती है। परियोजना के तहत 500 से अधिक वन रक्षकों ने प्रदेश के जंगलों में जाकर 2 लाख से अधिक पेड़ों का डाटा और प्रजातियों की पहचान से संबंधित तस्वीरें जुटाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से एक बार फिर से कर्मचारियों को ड्रेस कोड को लेकर रिमाइंडर जारी किया गया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को सख्ती से आदेशों का पालन करने को कहा है। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर अब उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी विभागों को जारी पत्र में कर्मचारियों को कार्यालय में मर्यादित औपचारिक और शालीन पहनावा अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और संवेदनशील मामलों पर अनधिकृत टिप्पणी करने से भी बचने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय और अदालत में पेशी के दौरान कर्मचारी साफ सुथरे, सभ्य और औपचारिक कपड़े पहने। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट पैंट अथवा ट्राउजर कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट तथा जूते या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार कमीज, कुर्ता दुपट्टा और ट्राउजर पैंट के साथ शर्ट जैसे परिधानों का उल्लेख किया गया है। कार्यालयों में जीन्स और टी शर्ट पहनने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। कर्मचारियों को ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देने को कहा गया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।
1: नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: नहीं है।
1: दोस्तों नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाचीज सचिन कपूर हूं। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को लेकर हाजिर हुआ हूं आप सभी के रेडियो सेट पर। बरसात का मौसम है धर्मशाला में इस समय, श्रोताओं बरसात जो है वो लगी हुई है, अभी बारिश जो है वो लगी हुई है श्रोताओं, और आप सभी कुछ लोग अपनी अपनी कार में जो है वो कार्यक्रम का आनंद लेंगे, कुछ लोग अपने घर में कार्यक्रम का आनंद लेंगे, कुछ लोग ऐप के जरिए कार्यक्रम का आनंद लेंगे और कुछ लोग चाय पकौड़े के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ, गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट करूँगा, बहुत सारी जानकारियाँ आप तक साझा करूँगा, शेयर करूँगा और साथ साथ में गीत संगीत का जो दौर है वो भी हम बिल्कुल चलाए रखेंगे श्रोताओं। तो सबसे पहले बात की जाती है मौसम की, तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को धर्मशाला के मौसम की ओर, मौसम की जानकारी की ओर श्रोताओं। धर्मशाला में अभी का मौसम जो है वो ठंडा और बरसाती है श्रोताओं, जहां हल्की बारिश हो रही है और तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मॉनसून सक्रिय होने के कारण पहाड़ों में घने बादल जो हैं वो छाए हैं और हवा में नमी का स्तर जो है वो लगभग 90 से 95% के आसपास है श्रोताओं। रात के समय न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। रात में बादल छाए रहेंगे, मोस्टली क्लाउडी जो है वो रात में रहेगा श्रोताओं, बीच बीच में हल्की बौछारें जो है वो पड़ सकती हैं। ये है मौसम की पूरी जानकारी जो आपने सुनी सचिन कपूर के साथ वीडी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी कार्यक्रम का आगाज करते हैं अखियों के झरोकों से। हाँ बिल्कुल, आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस बेहद प्यारे से गीत के साथ, और हेमलता की आवाज़ में गीत है श्रोताओं, फिल्म अखियों के झरोकों से ही लिया गया ये गीत है। लेकिन चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेली गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर आप सभी के वीडियो सेट पर हाजिर हूँ। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम हम सभी सुन रहे हैं श्रोतो, और इस कार्यक्रम में आप सभी बाखूबी जानते हैं कि हम जानकारियाँ भी आपके साथ जो है वो साझा करते हैं, साथ ही साथ गीत संगीत का दौर जो है वो भी चलता है। तो आइए लेके चलते हैं एक और ख़ास जानकारी की ओर आप सभी श्रोताओं को। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए वह विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे। राज्य से जुड़े विषयों को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया जाएगा। बीबीएमबी और किसानवाद से जुड़े मामलों में उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। राज्य को अपना अधिकार मिलने से हर वर्ष करीब 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हिमाचली अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम जो है वो तैयार की है श्रोताओं। इसी प्रकार से अन्य जानकारियां भी जो है वो आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन की गूंज के साथ, और इसी गूंज में हमारा अपनापन है श्रोताओं। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आरजे सचिन कपूर के साथ।

श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो आप सभी बाखूबी सुन रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्रोतो मुझे लगता है कि शायद जो गीत हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे क्योंकि आज वैसे अक्सर मैं टेक्निकल चीज़ें जो है वो अपने अनाउंसर के साथ देखता हूं, लेकिन आज जो मेरी टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारी बहुत ही प्यारी आवाज़ सुषमा दीवान जी जो है वो देख रही हैं शायद, तो थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है आवाज़ को लेकर, मेरी आवाज़ को नहीं गीतों की आवाज़ को लेकर, तो उसको हम ठीक करने की कोशिश में जो है वो जुटे हुए हैं। बहरहाल ज़रूरी भी है श्रोतों, ज़रूरी क्या है, हर दिन अच्छे से जीना जो है वो ज़रूरी है। तो आइए इस सॉन्ग को हम एक बार चेक कर लें और उसके बाद कुछ खास जानकारियाँ जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे।

শত এফএম ব্যান্ডে কেয়ানুদের সঙ্গে থারম শালা आप सभी ने ट्यून किया है और मैं नाचीज सचिन कपूर आप सभी के वीडियो सेट पर हाजिर हूँ कुछ एक खास जानकारियाँ लेकर। आइए श्रोतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी जो है वो आप तक साझा करते हैं और साथ ही साथ फेसबुक के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी जानकारियाँ जो है वो फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर जाएँ, हमारे अपने श्रोताओं तक जो है वो जानकारियाँ ज़रूर पहुँचे। श्रोताओं तो देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ना हम मानते हैं हार तो माननी नहीं चाहिए श्रोताओं कभी भी ज़िंदगी में। रास्ते कठिन है, मंजिल दूर है, लेकिन हार अगर आपने मान ली तो फिर ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। इसलिए ज़िंदगी जब तक सांसें चल रही हैं ना, तब तक हार मत मानिए, जैसे हम नहीं मानते कहीं भी हार। भाई साहब, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बारिश का दौर जो है वो धर्मशाला में इस समय चला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बारिश का दौर मैं कहूँगा कि धर्मशाला में इस वक्त चला हुआ है श्रोताओं। और इसी बारिश से जो है वो धर्मशाला की सड़कें धस रही हैं। जी बिल्कुल, एक छोर से तो धस ही रही थी लेकिन दूसरे छोर से भी जो है वो धसने शुरू हुए। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ श्रोताओं, धर्मशाला मैक्लोडगंज को जोड़ने वाले दोनों प्रमुख सड़क मार्ग जो हैं वो लगातार बारिश के चलते अब पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर पहुँच गए हैं श्रोताओं। एक और कोतवाली बाजार से खड़ा डंडा मार्ग पर जोगीवाड़ा के पास सड़क फिर धस गई है श्रोताओं, जो कि अब कभी भी वाहनों के लिए जो है वो बंद हो सकती है। वहीं दूसरी ओर की मैं बात करूं तो धर्मशाला मैक्लोडगंज मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 503 भी कैंट नाला के दूसरे मोड़ के पास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। दोनों मार्ग की बिगड़ती हालत से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक की आवाजाही भी जो है वो मुश्किल में डल सकती है श्रोताओं। मैक्लोडगंज खड़ा डंडा मार्ग जोगीवाड़ा में सड़क धंसने के बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। क्षतिग्रस्त हिस्से से वाहन बेहद सावधानी से मुश्किल से जो है वो गुजर रहे हैं श्रोताओं, और दोनों ओर लंबा जाम जो है वो लग रहा है। उधर धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 503 की हालत भी गंभीर हो गई है। कैंट नाले के दूसरे मोड़ के पास सड़क ने जैसे जवाब दे दिया है श्रोताओं, मतलब मान लीजिए कि जैसे जवाब ही दे दिया है। मार्ग की खतरनाक स्थिति को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की आवाजाही रोक दी गई है। इसके चलते पिछले चार दिनों से दस रूटों पर परिवहन निगम की बसें नहीं जा पा रही हैं। निजी वाहन चालक भी जान जोखिम में डालकर इस हिस्से को पार करने को मजबूर हैं श्रोताओं। ऐसे में दोनों प्रमुख मार्ग पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है। स्थानीय लोगों में से सुधेड़ पंचायत के प्रधान अजीत नेहरिया, मैक्लोडगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष नवेंद्र पठानिया, कारोबारी एवं समाज सेवी बिट्टू पठानिया, बर्नेट टैक्सी ऑपरेटर यूनियन अध्यक्ष अशोक शर्मा, संजीव सिंह राणा, दिनेश कपूर, विकास नेहरिया, नरेश सिंह व अन्य लोगों ने सड़क की स्थिति जल्द सुधारने की मांग उठाई है। लोगों ने प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जल्द सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित बनाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बरसात में सड़क क्षतिग्रस्त होती है लेकिन स्थायी समाधान के बजाय अस्थायी मरम्मत तक मामला सीमित रह जाता है। लोगों ने प्रशासन और संबंधित डिपार्टमेंट से बारिश थमने का इंतज़ार किए बिना संवेदनशील हिस्से को सुरक्षित करने, यातायात सुचारू रूप से चलने और दोनों मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाने की मांग रखी है। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा श्रोताओं, कार्यक्रम को लेके चलते हैं।
क्योंकि आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल लाइव। तो लेके चलते हैं कार्यक्रम को, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं ये प्यारा से गीत आप सभी के रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आई श्रोताओं, सुनाते हैं आप सभी श्रोताओं को ये गीत।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला को इस समय होस्ट कर रहा हूँ। श्रोताओं,

जानकारियों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल चला हुआ है, और जानकारियों के साथ साथ श्रोतों बिल्कुल गीत संगीत का सिलसिला भी जो है वो बिल्कुल चला हुआ है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी आप तक साझा करते हैं। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा अरक्कड़ क्षेत्र में मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक दर्दनाक घटना ने समस्त क्षेत्र को जो है वो झकझोर कर रख दिया है। श्रोतों, मोबाइल पर गेम खेलने के लिए फ़ोन नहीं मिलने से नाराज एक मात्र 14 वर्षीय किशोर ने जो है वो कथित तौर पर आत्मघाती कदम उठा लिया। श्रोतों, मृतक की पहचान प्रिंस पुत्र रवि कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार सदमे में है। वहीं इस घटना ने बच्चों और किशोरों में बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल और ऑनलाइन गेमिंग की निर्भरता को लेकर जो है श्रोताओं वो चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में जोनल अस्पताल धर्म

अचेत अवस्था भाई के कमरे में जो है वो भाई अचेत अवस्था में पाया देखा गया। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शतों बेटे की मौत से गमगीन रवि कुमार ने अन्य अभिभावकों से भावुक अपील की है। शतों उन्होंने कहा है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह नहीं चाहते कि किसी अन्य परिवार को ऐसी पीड़ा से गुजरना पड़े। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते इस्तेमाल पर नज़र रखने तथा उन्हें खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने स्कूलों से भी अपील की है कि पढ़ाई और गृह कार्य के नाम पर बच्चों को लगातार मोबाइल पर निर्भर ना बनाया जाए। बच्चों के साथ संवाद कायम करें, उन्हें मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल के दुष्परिणामों के बारे में समझाने की ज़रूरत है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम तो बार बार समझाते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हो चुका है। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बने हुए हैं इस समय वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ। लेके चलेंगे आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर इस नाचीज का एक बार फिर से जो है वो नमस्ते स्वीकार कीजिएगा जितने भी श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं। धर्मशाला में इस समय बरसात जो है वो लगातार हो रही है श्रोताओं, और क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो बरसात नहीं हुई है, हालांकि माफ़ करें पूरा दिन नहीं, आई थिंक 11 की बजे के बाद जो है वो बरसात होना शुरू हो गई है। बीच में फिर से थम गया था मौसम, लेकिन अभी फिर से सेकंड हाफ में जो है सराउंडिंग 5 बजे के करीब जो है वो फिर से धर्मशाला में बरसात जो है वो अभी तक लगातार जो है वो हो रही है। श्रोतों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। कुल्लू ज़िला के प्राथमिक स्कूल बाड़ी में खीर खाने के बाद जो है वो छात्रों के बीमार पड़ने की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर जो है वो सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने सभी उपनिदेशकों, प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को मॉनसून के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है वो तत्काल प्रभाव से विशेष एहतियात कदम उठाने को जो है वो श्रोताओं कहा है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में केवल सुरक्षित फिल्टर या उबला हुआ पानी ही विद्यार्थियों को जो है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि श्रोताओं क्योंकि हम सभी बाखूबी जानते हैं बरसात का मौसम है, मानसून उतरा हुआ है और अभी जो पानी होता है वो पानी ख़राब होता है, जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब रहता है। इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि या तो उबला हुआ पानी विद्यार्थियों को दिया जाए या फिल्टराइज जो पानी है वो विद्यार्थियों को दिया जाए, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो सुरक्षित रहें और सावधान रहें। श्रोताओं है ना जी, सावधान भी रहें और सुरक्षित भी रहें, क्योंकि आप सभी को ये बाखूबी पता होगा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो पानी के कारण होती हैं। अगर आपने गलत पानी पी लिया, अगर आपने गंदा पानी पी लिया श्रोताओं, तो आई थिंक 60-80 ये आई थिंक जो फ्रिक्वेंसी है वो रहती है, आंकड़ा जो है वो रहता है कितनी बीमारियाँ जो हैं वो पानी के कारण होती हैं, है ना, अगर आपने साफ़ सुथरा पानी नहीं पिया तो। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आपके अपने मनपसंद आपका अपना पसंदीदा रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और ये नाचीज सचिन कपूर इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर, ये वेडी गुंजन है और मैं सचिन कपूर हूँ, प्रेमी पागल आवारा। ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं श्रोतो, है ना जी। शोला और शबनम मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोतो, शबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत हमने सुना। फिलहाल हम लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को थोड़े से और आगे और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जो है वो एक बार फिर से कर्मचारियों को ड्रेस कोड को लेकर रिमाइंडर जारी किया गया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को सख्ती से आदेशों का पालन करने को कहा है श्रोताओं। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर अब उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी विभाग को जारी पत्र में कर्मचारियों को कार्यालय में मर्यादा, औपचारिक और शालीन पहनावा अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और संवेदनशील मामलों पर जो है वो टिप्पणी करने से भी बचने को कहा गया है श्रोताओं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय और अदालत में पेशी के दौरान कर्मचारी साफ सुथरे, सभ्य और औपचारिक कपड़े पहने। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट, पैंट अथवा ट्राउज़र, कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट तथा जूते या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार कमीज, कुर्ता दुपट्टा और ट्राउज़र पैंट के साथ शर्ट जैसे परिधानों का उल्लेख किया गया है श्रोताओं। कार्यालय में जीन्स और टी शर्ट पहनने से स्पष्ट रूप से जो है वो मना किया गया है। कर्मचारियों को ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देने को कहा गया है। ये निर्देश हिमाचल सरकार द्वारा है श्रोताओं। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड पर एक बार फिर से जो है वो रिमाइंडर जारी किया है। तो इस समय अगर कार्यक्रम सुन रहे हैं सरकारी कर्मचारी कोई भी, तो इस रिमाइंडर को एक बार आप अपने जहन में जो है वो बिल्कुल बैठा लीजिए। कार्यक्रम में इसी तरह से श्रोताओं जानकारियों का पिटारा जो है वो चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। श्रोताओं आपसे ठीक 2 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे आप सुनेंगे समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में, गूंज अपने पन की और गूंज आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं के, जितने भी श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं।

0: ये 5 साल से जमा
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
1: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
7: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं वेडियो सेट पर। श्रोतों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जो है वो जनजीवन बुरी तरह से जो है वो प्रभावित हुआ है। श्रोतों जी बिल्कुल, अगर दिनों हुई मूसलाधार बारिश ने कांगड़ा के साथ लगती पंचायत जो है वो सहोड़ा में भी खूब तबाही जो है वो मचाई है। श्रोतों पंचायत के बल्ला गांव में 4 कमरों का 2 मंजिला कच्चा मकान बारिश की थपेड़ जो है वो सह नहीं पाया और ढह गया। श्रोतों ये मकान स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास का था। मकान का सारा मलबा सुविंदर सैनी और हरवंश सैनी के आंगन में आ गिरा श्रोतों, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। क्योंकि बरसात का मौसम है और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आंगन में खेलते रहते हैं, ऐसे में हर समय अनहोनी का खतरा बना हुआ है। गनीमत ये रही श्रोताओं कि मकान के गिरने से कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन श्रोताओं गिरे हुए मकान का बाकी हिस्सा जो है वो कभी भी गिर सकता है श्रोताओं, जिससे साथ लगते घरों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है और अन्य भी इसकी चपेट में जो है वो आ सकते हैं। पंचायत प्रधान कश्मीरा देवी ने मौके का मुआयना किया और प्रभावित ने उनसे गुजारिश की है कि मलबे को वहां से हटाया जाए, साथ ही कच्चे मकान के बाकी जो हिस्सा है उसे भी गिराया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो और बाकियों को भी जो है अब वो इस चपेट से जो है वो बचाया जाए। बहरहाल आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ, और कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा, खुलता रहेगा। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर हवेली गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव। और श्रोताओं कैसे हैं आप सभी यार, आप सभी अपना हाल बताइए, कैसे हैं आप सभी, ठीक हैं? चलिए ठीक ही रहने चाहिए श्रोताओं, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो कभी भी कहीं भी जो है वो पलट सकती है। अगर आप अपना एक बात ज़रूर मायने रखती है श्रोताओं की जो समय है ना श्रोताओं वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, समय बदलता ज़रूर है श्रोताओं। यानी आप मान लीजिए अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है या कोई बुरा कर रहा है या बुरा आपकी लाइफ में चल रहा है तो ये समय एक जैसा नहीं रहेगा। ये समय जो है वो बदलेगा ज़रूर। ये समय जो है वो ज़रूर बदलेगा श्रोताओं। समय अच्छा हो जाएगा, अगर आज समय ख़राब है तो कल समय जो है वो अच्छा हो जाएगा श्रोताओं। बहरहाल आप सभी को लेके चलते हैं कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे और जानकारी का सिलसिला बढ़ाते हैं थोड़ा सा और। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में अब केवल हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं रहेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का बड़ा जरिया बनेंगे श्रोताओं। प्रदेश की वन एवं चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था में मौजूद करीब 22,600 करोड़ रुपए की अपयुक्त आर्थिक क्षमता का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने के लिए वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बीच 5 वर्ष का समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के तहत वन संसाधनों की पहचान से लेकर बाजार से जुड़ने तक की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये साझेदारी विज्ञान, स्थानीय समुदाय व सरकार को मंच पर लाकर हिमाचल के वन प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला सकती है। परियोजना के तहत 500 से अधिक वन रक्षकों ने प्रदेश के जंगलों में जाकर 2,00,000 से अधिक पेड़ों का डाटा और प्रजातियों की पहचान से संबंधित तस्वीरें जुटाई हैं श्रोताओं। जानकारी का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। आइए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको अगला ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में गूंज अपने बन की।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। श्रोतों, एक गुजारिश आप सभी से मैं करना चाहूँगा, खासकर न्यूली पेरेंट्स से मैं ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल बिल्कुल भी ना दें, मोबाइल की एडिक्शन जो है वो बिल्कुल भी ना डालें बच्चों पर। आपका घर का काम होता रहेगा, आपकी और जो अन्य काम है वो भी होते रहेंगे। अगर आपने मोबाइल एडिक्शन बच्चे को डाल दिया तो फिर उससे बाहर निकलना जो है वो कुछ असंभव सा लगता है श्रोताओं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ ये चीज़ असंभव सी लगती है। सो आप सभी से गुजारिश है कि बच्चों को जो है वो मोबाइल ना दें। आप सभी इस बात का, जो न्यूली पेरेंट है वो सभी इस बात का ख़ास ख्याल जो है वो ज़रूर रखे श्रोताओं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर, क्योंकि ये शाम जो है वो बिल्कुल मस्तानी हो रही है श्रोतों, है ना जी। तो इस मस्तानी शाम में ये प्यारा सा गीत तो बनता ही है।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने किया है इस समय ट्यून और मैं नाची सचिन कपूर हूँ। शोतो वक्त हो चुका है रेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का। वापस मिलते हैं अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं से। यूं ही बने रहेगा, जुड़े रहेगा रेडियो गुंजन की गूंज।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो?
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ, आप

नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए। कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था?
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी,

श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है। इस अंतराल के बाद लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत।

0: 14 FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने वेड़ी गुंजन धर्मशाला को ट्यून किया हुआ है और श्रोतों 7:45 हो गए। अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन में प्रादेशिक समाचारों का।
1: पहले ही दिन सदन में हंगामा, 10 मिनट चली सदन की कार्यवाही। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने। मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही भाजपा। भाजपा ने राष्ट्रीय गीत के अपमान का लगाया आरोप, कहा राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल के महत्वपूर्ण विषयों व विकास को लेकर की विस्तृत चर्चा। और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित गग्गल पंचायत के लोगों ने उचित मुआवजे और पुनर्वास की सरकार से की।

0: मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई, जिसके बाद विपक्षी दल भाजपा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने की मांग उठाई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: शिमला में आज से शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में राष्ट्रगीत को लेकर भारी गतिरोध देखने को मिला। सत्र के पहले दिन सदन की औपचारिक शुरुआत परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान जनगण मन से हुई। इसके तुरंत बाद ही विपक्षी सदस्यों ने इस पर कड़ा एतराज जताया। विपक्ष का तर्क था कि केंद्र सरकार के हाल ही के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजनों की शुरुआत राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से होनी चाहिए और विधानसभा में भी इसी व्यवस्था का पालन किया जाना आवश्यक है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को शांत कराने और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने सदन को सूचित किया कि शुरुआत में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए शोकोद्गार पेश किए जाने हैं, इसलिए कार्यवाही को नियमानुसार चलने दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दी कि केंद्र सरकार का नया नियम सामान्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए है और विधानसभा की अपनी नियमावली और परंपराएं हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा की स्थापित परंपरा के तहत सदन की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ और समापन राष्ट्रीय गीत के साथ होता है। इस पर विपक्ष नहीं माना और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा होते देख विधानसभा अध्यक्ष ने 10 मिनट में ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष भी विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ सदन के बाहर आ गया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया है और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान सत्र की शुरुआत में और राष्ट्रीय गीत सत्र के अंत में गाया जाता है, लेकिन भाजपा नियमों के विपरीत केवल राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधानसभा की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान, अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सब उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। विधानसभा की परंपरा रही है कि राष्ट्रीय गान गाया जाना। जो पार्टी राष्ट्रीय गान का अपमान कर सकती है, राष्ट्रीय गान के अपमान में विरोध कर सकती है, हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हिमाचल प्रदेश के विधायक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, इसको कभी सहन नहीं करेंगे।
0: दूसरी ओर भाजपा विधायक विपिन परमार ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने सदन में राष्ट्रीय गीत गाने की विनम्र मांग की थी, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
3: एक्ट अभी पार्लियामेंट में पारित हुआ है, उस एक्ट और नियम को पूरा देश पालना कर रहा है। 15 अगस्त अभी राष्ट्रीय एक नेशनल इवेंट था, उस इवेंट को स्वीकार किया गया। परंपराएं तो बनाई जाती है और वंदे मातरम क्या है, मैंने पहले भी कहा है, हे मातृभूमि तुम्हें हम श्रृंगार के रूप में, हम इस मातृभूमि के पुत्र देखना चाहते हैं। अब कुछ धर्मों के लोगों को ये ठीक नहीं लगता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना मन, वाणी और व्यवहार बदलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अपमान।
0: इधर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया कि लोकसभा सहित कई विधानमंडलों में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रीय गीत से करने के नियम हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिस कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
4: जो राष्ट्रगीत है, जब राष्ट्रगीत लोकसभा में शुरुआत है, उस समय की सरकार के द्वारा अडॉप्ट हुआ, लोकसभा के अंदर उसको गाया गया, उस समय की प्रोसीडिंग देखो और वहां पर सहमति हुई, कंसेंसस हुआ अमंग द ऑल पॉलिटिकल पर्सन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उस कंसेंसस के ऊपर ही वो चार पहरे रखे गए और जो बाकी का जो पार्ट था उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। अब कानून के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार उसको एनफोर्स करना चाह रही तो करे, वो तो जो संस्थान है सरकारी उनमें होगा। विधानसभा अपने नियमों पर चलती है या अपनी परिपाटी पर चलती है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ किए गए वायदों को पूरा न करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर पूरे बिजनेस को स्थगित कर रोजगार के मुद्दे पर चर्चा करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश में 5,00,000 नौकरियां देने का वायदा कर आई थी, लेकिन 4 साल का कार्यकाल बीतने के बाद अब तक कुछ 1,000 नौकरियां ही दी गई हैं।
5: कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय युवाओं के साथ प्रमुख वायदा था 5 साल में 5,00,000 रोजगार दिए जाएंगे, परंतु आज तक 4.25 साल बीत गए 1,00,000 से दूर। अभी कुछ 1,000 नौकरियां देकर ही ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर भी नियम 67 का कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।
0: दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोध जताना विपक्ष का दायित्व है, लेकिन भाजपा विधायक आंतरिक कलह के चलते प्रदर्शन कर रहे हैं।
6: प्रोटेस्ट में कोई बुरी बात नहीं होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, उनका दायित्व बनता है। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? ये प्रोटेस्ट तो इसलिए करते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक कलह है जो 5 बूथों में बटी है, उसमें किसी न किसी तरह जयराम ठाकुर जी के प्रति इनका विश्वास नहीं है और ये किसी तरह जयराम ठाकुर जी को विपक्ष के दबाव से हटाने की प्रक्रिया में प्रोटेस्ट कर रहे।
0: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों और विकास से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से एक विशेष राज्य है और यहाँ विकास की चुनौतियाँ भी अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों परिवारों को मिल रहा है। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश को निरंतर सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की जद में आ रहे गग्गल के पंचायत लाइन क्षेत्र के लगभग 80 परिवारों ने सरकार से उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले 60 से 70 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इनमें से कई परिवारों को जमीन सरकार की ओर से आवंटित की गई थी। ऐसे में विस्थापन की स्थिति में उन्हें नाम पत्र का मुआवजा दिया जाना उनके साथ अन्याय होगा। गग्गल पंचायत के प्रभावित परिवारों ने आज उपायुक्त से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग की। प्रभावितों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की है।
7: हमारे यहाँ पे जो मतलब सारे 70 से 80 परिवार हम जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे रहते हुए गग्गल में 70 साल से ऊपर हो गए हैं और हमने ना के बराबर सिंगल मुआवजा दिया जा रहा है डीसी के द्वारा। आज हम आए थे डीसी सर के पास, तो हमारी यही मांग थी कि हमें जैसा बाकी सबको मिला है वैसे ही हमें दिया जाए। हमने मेनली ये मुद्दा भी रखा है कि हमारे में बीच में कुल 25 से 30 परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने यही जमीन अपने खुद के नाम करवाई है, जिनको आज करोड़ों के हिसाब से मुआवजा मिला है। जब उनको मिल सकता है, उनके नाम हो सकती है, तो हमारे नाम क्यों नहीं। मेरी जस्ट सीएम सर से भी रिक्वेस्ट है, बाकी जितने भी हमारे एमएलए जो भी हैं सारे, हम उन सब से भी रिक्वेस्ट करने जाते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में शुरू, पहले ही दिन सदन में हंगामा, 10 मिनट चली सदन की कार्यवाही। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष आमने सामने। मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय गीत का मुद्दा उठा रही भाजपा। भाजपा ने राष्ट्रीय गीत के अपमान का लगाया आरोप, कहा राष्ट्रीय गीत के सम्मान के प्रति गंभीर नहीं कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल के महत्वपूर्ण विषयों व विकास को लेकर की विस्तृत चर्चा। और कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित गग्गल पंचायत के लोगों ने उचित मुआवजे और पुनर्वास की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
8: तो वक्त का वाकई में ही ना पता नहीं चलता कि कब वक्त जो है वो हो जाता है आप सभी से अलविदा लेने का। तो इन्हीं प्रादेशिक समाचारों के साथ जो है इस नाचीज की आवाज़ को भी दीजिए अब थोड़ी सी देर के लिए विराम। कल फिर मिलते हैं श्रोतों आप सभी के रेडियो सेट पर 91.2 MHz पर। बने रहिए, जुड़े रहिए सचिन कपूर के साथ और रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ बाप की सेवा ज़रूर करते रहिए श्रोतों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ इजाज़त।

0: गोरिया
1: गोरिया
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
5: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
4: देखिए भाई साहब आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
3: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है। ये देखिए, कौन सा स्टाइल चाहिए आपको? ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी, बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं?
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। मानसून सत्र के बाद हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए दिल्ली जाएंगे सुक्खू। शिक्षा विभाग सख्त, स्कूलों में उबला या फिल्टर पानी बच्चों को पिलाने के आदेश। वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप में बदलाव, एक से ज्यादा छात्रवृत्ति ले सकेंगे छात्र। प्रदेश में 22,600 करोड़ की ग्रीन वेल्थ का दोहन होगा। ऑफिस में जींस टी शर्ट पहनने पर सख्ती। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए वह विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे। राज्य से जुड़े विषयों को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया जाएगा। बीबीएनबी और किशाऊ बांध से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आने से बड़ा आर्थिक लाभ होगा। राज्य को अपना अधिकार मिलने से हर वर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। हिमाचली अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम तैयार की है। कुल्लू जिले के प्राथमिक स्कूल बाड़ी में खीर खाने के बाद छात्रों के बीमार पड़ने की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को मानसून के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष एहतियाती कदम उठाने को कहा है। निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में केवल सुरक्षित फिल्टर या उबला हुआ पानी ही विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP पर शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से छात्रवृत्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मेधावी विद्यार्थी केवल एक छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं रहेंगे। वन स्टूडेंट वन स्कॉलरशिप व्यवस्था में बदलाव करते हुए पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ SC, ST और OBC वर्ग के तहत मिलने वाली एक से अधिक छात्रवृत्तियों का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं की पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और विश्वविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन विद्यार्थियों को होगा जो मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति हासिल करने के साथ साथ SC, ST या OBC वर्ग की कल्याणकारी छात्रवृत्ति के लिए भी पात्र थे, लेकिन इन छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं ले पाते थे। बाल विकास समिति जिला कांगड़ा ने धर्मशाला के रक्कड़ क्षेत्र में मोबाइल फोन की कथित लत के चलते किशोर की मौत के मामले में गहरी चिंता जाहिर की है और इस मामले में पुलिस से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। समिति ने बुधवार को धर्मशाला थाना क्षेत्र के तहत रक्कड़ क्षेत्र के एक 14 वर्षीय किशोर द्वारा कथित तौर पर गेम खेलने के लिए मोबाइल फोन न दिए जाने के चलते घर के कमरे में ही फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। यह जानकारी जिला कांगड़ा बाल विकास समिति के अध्यक्ष विक्रमजीत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर उनकी अध्यक्षता में बाल विकास समिति ने इस मामले पर चर्चा की और इसकी स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद समिति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगी। हिमाचल प्रदेश के जंगल अब केवल हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं रहेंगे बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का बड़ा जरिया बनेंगे। प्रदेश की वन एवं चरागाह आधारित अर्थव्यवस्था में मौजूद करीब 22,600 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता का वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने के लिए वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी BIPP के बीच 5 वर्ष का समझौता हुआ है।
वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के तहत वन संसाधनों की पहचान से लेकर बाजार से जोड़ने तक की पूरी व्यवस्था विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी विज्ञान, स्थानीय समुदायों व सरकार को मंच पर लाकर हिमाचल के वन प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला सकती है। परियोजना के तहत 500 से अधिक वन रक्षकों ने प्रदेश के जंगलों में जाकर 2 लाख से अधिक पेड़ों का डाटा और प्रजातियों की पहचान से संबंधित तस्वीरें जुटाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से एक बार फिर से कर्मचारियों को ड्रेस कोड को लेकर रिमाइंडर जारी किया गया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को सख्ती से आदेशों का पालन करने को कहा है। वहीं नियमों की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों पर अब उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी सरकारी विभागों को जारी पत्र में कर्मचारियों को कार्यालय में मर्यादित, औपचारिक और शालीन पहनावा अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सरकारी नीतियों, योजनाओं और संवेदनशील मामलों पर अनधिकृत टिप्पणी करने से भी बचने को कहा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्यालय और अदालत में पेशी के दौरान कर्मचारी साफ सुथरे, सभ्य और औपचारिक कपड़े पहने। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट पैंट अथवा ट्राउजर, कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट तथा जूते या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है। महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, औपचारिक सूट, सलवार कमीज, कुर्ता दुपट्टा और ट्राउजर पैंट के साथ शर्ट जैसे परिधानों का उल्लेख किया गया है। कार्यालयों में जीन्स और टी शर्ट पहनने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है। कर्मचारियों को ग्रूमिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देने को कहा गया है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

0: गोरिया
1: आकर
0: गोरिया गोरिया गोरिया आकर आ
2: गोरिया
3: हटो हटो हटो हटो एले गोरिया।
4: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
5: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो।
6: अरे बेटो तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये दोनों लड़कियों कौन है?
5: देखिए भाई साहब आप कौन है?
6: जी मैं इसका बाप हूँ।
5: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
7: जी नहीं।
5: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
8: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
5: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
7: रोड किसी के बाप का नहीं।
5: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
9: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए, थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
2: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
2: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: 고리야 아
1: 고리야 아 가라 고리야
2: गोरिया।
3: प्लास्टिक गोरिया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई।
4: बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो, पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो?
5: ओए बिट्टो, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है?
4: देखिए भाई साहब, आप कौन है?
5: जी मैं इसका बाप हूँ।
4: आप इसके बाप हूँ? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है?
6: जी नहीं।
4: तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के रूम रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें?
7: जवान तो कटेगा भैया तेरा।
4: और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियम का पालन कीजिए, क्योंकि
6: रोड किसी के बाप का नहीं है।
4: शाबाश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
8: नमस्कार दोस्तों, प्रेम विश्वास और भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। राखी का ये पवित्र धागा सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं, बल्कि प्यार विश्वास सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के वचन का प्रतीक है।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे। हर कलाई पर सजे प्यार का धागा और हर चेहरे पर मुस्कान रहे। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं के साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला की ओर से आ रहे इस रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्ते भैया, कैसे हो भाभी जी?
1: अभी शादी का लहंगा सिलवाना था।
0: हाँ हाँ, बहुत सारे डिजाइन है, ये देखिए कौन सा स्टाइल चाहिए आपको। ये देखिए, पिछले महीने मिश्रा जी की बेटी की शादी के लिए सिया था।
1: ये तो स्लीवलेस है, हमें फुल स्लीव्स वाला चाहिए। थोड़ा सिंपल दिखाइए।
0: सिंपल में तो फिर, अरे पर किसके लिए बनाना है?
1: चुन्नी के लिए।
0: ये अपनी चुन्नी?
1: हाँ, अच्छा रिश्ता मिला है।
0: बेटा चुन्नी, कितने साल के हो आप?
2: अगले ही महीने 12 साल की हो जाएगी। पंडित जी ने इसी इतवार का मुहूर्त निकाला है, तो हो तो जाएगा ना तब तक।
0: अच्छा, 12 साल की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है?
2: नहीं, क्यों?
0: और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है? पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सीऊंगा।
2: चलो छोड़ो उसे, किसी और से सिलवा लेंगे।
0: अरे भैया जी, एक मिनट। अरे बिरजू, वो कौन सा नंबर है, निकलवाओ तो जरा।
3: मास्टर जी, टोल फ्री नंबर है 1098, कभी भी कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं।
0: ना हम सीएंगे, ना किसी को सीने देंगे।
4: जीवन की हर उलझन का हल मिलेगा मित्र, बस अपने मन को थोड़ा शांत करके देखो। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी खामोशी में ही ईश्वर का वास।
5: मम्मी जी क्या कह रहे हैं, बचपन में आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था।
6: हाँ, जब मैं 12 साल का था ना, तो मैं पापा को बिना बताए उनकी बाइक लेके घर से बाहर निकल गया, और मैं बाइक इतनी तेज चला रहा था कि सामने से एकदम से ट्रक आ गया। तो ट्रक को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से लेफ्ट ले लिया। तो जैसे ही लेफ्ट लिया, सामने से गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी में जाके बाइक लगी और बाइक पूरी खत्म हो गई।
5: बेबी बाइक को छोड़ो, आप बताओ आप बचे थे कि नहीं।
6: तब तो बच गया था, लगता है अब नहीं बचूंगा।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: नहीं,
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।